कहते हैं कि जो नरमी दिखाता है वो जल्दी कुचला जाता है। वेलकम बैक, इट हैपेंस। सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। हमारी अच्छाई ना कभी कभी हम पर भारी पड़ जाती है। हम लोगों से बड़े अच्छे से बात करते हैं, उन्हें अपनी तरह साफ दिल का समझते हैं, उन्हें जरूरत हो ना हो हम हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के लिए अच्छे बनेंगे ना तो आपकी अच्छाई का लोग फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। आज का जमाना वो जमाना है जब अच्छे इंसान को बेवकूफ समझ लिया जाता है, इसलिए ज्यादा अच्छाई जो है आपकी वो आप पर भारी पड़नी शुरू हो जाती है। मतलब ठीक है, आप समझते हैं कि एक इंसान को जरूरत है, आप बिना जताए भी कि आपको पता है आप उसकी दूसरी तरह से हेल्प कर दीजिए, लेकिन ये मत जताइए कि भाई आपको उसको देखकर बड़ा बुरा फील हो रहा है या आप उसके साथ हैं, उसके सपोर्ट में हैं। जितना आप अच्छे दिल के बनेंगे लोग उतना ही आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, उतना ही आपको बेवकूफ समझेंगे और बेवकूफ बनाएंगे, है ना। तो अच्छाई का मतलब ये नहीं है, सिधाई का मतलब ये नहीं है कि लोग हमें बेवकूफ समझने लगे, लोग हमें समझने लगे इसको कैसे भी करके उल्लू बनाया जा सकता है, सही नहीं है, है ना। तो बस ख्याल रखिए अपनी सिधाई को, अपनी अच्छाई को लोगों के सामने जग जाहिर मत कीजिए। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

कई बार दोस्तों मैंने देखा है कि लोग किसी रिश्ते में या अपने दोस्तों में खासकर ये बताते हैं कि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है, उन्हें तन्हाइयों से डर लगता है। आज के टाइम पे ना दुनिया में जो लोग हैं वो आपकी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। आपकी कमजोरी अगर एक बार इंसान ने पकड़ ली ना, तो फिर वो जान जाता है कि आपकी कौन सी नब्ज को दबाना है और बस आप उसके पीछे, है ना। तो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए, दूसरे की ताकत मत बनने दीजिए। इसलिए अगर अकेलेपन से या तन्हाई से डर लगता है तो सामने वाले को बताकर उसे ताकत मत दीजिए। आपका अकेलापन आपकी ताकत है, आपकी कमजोरी नहीं है। और वैसे भी मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि अगर आप खुद के साथ दोस्ती करते हैं, खुद से बात करते हैं, तो यकीन मानिए आपसे बेहतर आपका तन्हाइयों का साथी और कोई नहीं है। आपको फिर किसी और का साथ अच्छा ही नहीं लगता है, आपको सिर्फ अपना साथ समझ आता है। और बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट होता है वो, जब आप खुद के साथ रहना, खुद के साथ कॉफी इंजॉय करना, खुद के साथ लंच इंजॉय करना आप सीख जाते हैं। उससे बेहतर फिर लाइफ में और कुछ बचता नहीं है। तो अपनी कमजोरियों को, कहने का मतलब है, जता करके, दूसरे को बता करके आप उसकी पावर को बढ़ा देते हैं। ये आपको नहीं करना है। आइए एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ इसी बात पर, और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: बियॉन्ड व्हाट यू सी Q11700 द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

दोस्तों, लाइफ में अपनी बाउंड्रीज को सेट करना बहुत जरूरी होता है। मैंने देखा है कि कई बार लोग किसी को कुछ भी कह देते हैं और उसे कहने के बाद वो रियलाइज भी नहीं करते कि सामने वाले को उन्होंने गलत कहा है। और इसमें गलती उनकी नहीं है, इसमें गलती उस बंदे की है जिसको कहा गया है। सीरियसली, क्योंकि अगर उसने पहली बार में ही सामने वाले को, जब वो इस रिश्ते में आया, चाहे दोस्ती है चाहे रिलेशनशिप है, अगर वो उस रिश्ते में आने पर ही उसको बता दे कि सुनो मुझे ये चीजें नहीं पसंद है या ये चीजें मेरे साथ रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना, तो सामने वाला समझ जाता है कि यार ये इसकी बाउंड्री है और मुझे इसे क्रॉस नहीं करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर यार इसे बुरा लग गया तो, अगर इसने रिश्ता खत्म कर दिया तो, या अगर इसने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो, इस डर से हम उसकी गलत बातों को भी सहते चले जाते हैं। और जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें लगता है कि यार ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा रहा है, इसे तो बात करने की तमीज नहीं है, ये तो अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। तो भाई वो लाइन, वो बाउंड्री पहले ही सेट कर दीजिए ना कि भाई तुम्हें इसे क्रॉस नहीं करना है, वरना हमारा रिश्ता ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। वो बंदा भी समझ जाएगा कि भाई इस बंदे में सेल्फ रिस्पेक्ट है और मुझे इसका ख्याल रखना है, इसकी रिस्पेक्ट करनी है, है ना। तो बस आप अपनी ही बेटरमेंट के लिए, अपनी ही अच्छाई के लिए आप ये चीजें अपने लिए सेट करेंगे। तो बाउंड्रीज आप चाहे किसी भी रिश्ते में या खुद के लिए भी, आपको बाउंड्रीज सेट करनी बहुत जरूरी है कि आप वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे। एक और ट्रैक सदाक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM पर।

कई बार हम लोगों से एक रिश्ते में जुड़े रहते हैं तब भी जब हमें उनके पास से अच्छी वाइब्स नहीं आती। देखिए, हम सब ना एक इंसान हैं और हम सबके पास ईश्वर ने एक चीज दी है, वो है सिक्स सेंस। कई बार आप लोगों के जब आसपास होते हैं, आपका सिक्स सेंस वर्क करना शुरू करता है और बहुत एक्टिव मोड में वर्क करता है। आपको बार बार ये सिग्नल मिलता है कि यार ये बंदा सही नहीं है। आपको बार बार ये सिग्नल मिलता है कि इसकी वाइब्स अच्छी नहीं है, इसका ऑरा अच्छा नहीं है, हमें इससे दूर रहना है, ये बातें अच्छी नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते में रहते हैं, आप उस इंसान के साथ रहते हैं, आप उस इवेंट में उसके साथ रहते हैं। तो जिस इंसान के पास से आपका सिक्स सेंस ये कहे कि भाई इससे दूरी भली है या इसका ऑरा अच्छा नहीं है या आपको वाइब्स आए कि यार ये इंसान सही नहीं है, उस इंसान से दूरी बना लीजिए जितनी जल्दी हो सके। अपने सिक्स सेंस को, अपने इंट्यूशन को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। आपका इंट्यूशन आपका दिल होता है और वो बहुत सही बात आपसे कहता है। कई बार आप ये पाएंगे कि यार ये तो इंट्यूशन मुझे पहले ही आ गया था, है ना। तो जब एक व्यक्ति को लेके, एक इंसान को लेके वो इंट्यूशन आपको आ रहा है, आप उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप उसकी बातों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उन्हें देख पा रहे हैं कई बार कि कैसे ये लोगों के साथ ट्रीट करता है, बात करता है या क्या इसमें गलत है, उसके बाद भी अगर आप उस रिश्ते में उस इंसान के साथ हैं तो भाई आप अपने लिए ही तो गड्ढा खोद रहे हैं ना। तो सिक्स सेंस, अपने इंट्यूशन का बहुत ख्याल रखिए कि वो आपको क्या सिग्नल देता है। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

प्रार्थनाएं तो आप सब रोज करते हैं, है ना। प्रार्थनाएं करते रहिए, अगर नहीं करते हैं तो जरूर करते रहिए। और छोटी मोटी चीजें मत मांगिए, ऊपर वाले से जितना बड़ा मांग सकते हैं मांगिए। देखिए वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपके लिए तैयार करके बैठा है, लेकिन आप ही हैं जो छोटी छोटी सी चीजें मांगते रहते हैं और उसे लगता है कि यार लो मैं तो इतना बड़ा सोचकर बैठा था, ये बंदा तो छोटे में ही खुश है, चलो उसको छोटा ही दे देते हैं। तो देखिए देने वाला बेहिसाब दे रहा है, आप भी बेहिसाब मांगते चलिए और अपने काम को बहुत ईमानदारी से करिए। सिर्फ मांगने से काम नहीं बनता है, है ना। तो अपने काम को भी बहुत ईमानदारी से करते चलिए, फोकस कीजिए अपने वर्क पर, अपने काम पर, अपनी पर्सनालिटी पर, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। आप दूसरों से अट्रैक्ट हों ये जरूरी नहीं है, दूसरे आपसे अट्रैक्ट हों वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सताक्षी के साथ ये अगला ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

तो दोस्तों ये इट हैपेंस पर आज सताक्षी का साथ था। आज की एक और मॉर्निंग हमने साथ में गुजारी, साथ में बिताई, और भाई आपको भी जरूर मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया। तो कल कुछ और लम्हे साथ जिएंगे, एक बार फिर से मॉर्निंग पर मेरा साथ होगा, आप मेरे साथ होंगे, और हम और आप मिलकर कुछ बहुत ही गहरी और प्यारी बातों को फिर से करेंगे। आज के सफर से अब ये वक्त है इजाजत लेने का, तो चलिए मैं चलती हूँ। आप मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए, और रेडियो प्रस्थानी सुनते रहिए। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।

ने एक वड्डा फैसला सुनाउंदे भारतीय पंजाबी नागरिक अभजीत सिंह किंगड़ा नूं कैनेडा तो डिपोर्ट करन दे हुकम जारी कीते हन। अभजीत किंगड़ा नूं मशहूर पंजाबी गायक एपीटी ढिल्लो दे विक्टोरिया स्थित घर ते गोलियां चलाउण दे मामले विच दोषी पाया गया है, जो उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे इशारे ते कीता है। आईआरपी दे मैंबर अजीज लालजी ने अभजीत किंगड़ा ने एपी ढिल्लो दे घर ते 14 राउंड गोलियां चलाउण ते गड्डी नूं अग लगाउण दी वीडियो बना के इंटरनेट ते शेयर कीती सी, जिस नाल बिश्नोई गैंग नूं ओंटारियो तो ब्रिटिश कोलंबिया तक दहशत फैलाउण विच मदद मिली। हालांकि अभजीत दा डिपोर्टेशन दा ए हुकम तुरंत लागू नहीं होवेगा, क्योंकि 26 साल अभजीत किंगड़ा पिछले साल अदालत विच अपना गुनाह कबूलण तो बाद कैनेडा दी जेल विच 6 साल दी सजा काट रहा है। सारी सजा पूरी होण तो बाद उस नूं भारत डिपोर्ट कीता जावेगा। उधर पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान विधानसभा हलका चब्बेवाल दे पिंड बिहाला विखे लोक मिलनी दौरान बेअदबी दे मुद्दे ते विरोधियां ते तिखा हमला करदिआं नजर आए ते कहा है कि पिछले समय दौरान बेअदबी संबंधी कानून कमजोर सी, पर उन्हां दी सरकार ने आ के इस नूं सख्त कीता। उन्हां कहा है कि जिहड़े लोक हुण कानून ते सवाल चुक रहे हन, उन्हां कोल सरकार नूं बदनाम करन तों इलावा कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हां ते इल्जाम लगाउण लई कई तरह दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने, पर ओ अपने आप नूं किस्मत वाला समझते हैं कि गुरु साहिब ने उन्हां कोलों सेवा लई है। उन्हां कहा है कि पिछलियां सरकारां कोल भी बहुमत सी, ओ चाहुंदे तां पहलां ही सख्त कानून बना सकते सन। उन्हां कहा है कि धार्मिक संस्थावां दी मर्यादा सब तों उच्ची है ते उन्हां नूं सियासी लाभ लई वरतना ठीक नहीं है। उधर इस नाल ही एक वीडियो नूं लैके खड़े हुए विवाद दौरान पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपना पक्ष भी रखिया। पक्ष रखदिआं कहा है कि वायरल वीडियो उन्हां दी नहीं अते उन्हां खिलाफ योजनाबद्ध ढंग नाल झूठा प्रचार किया जा रहा है। उन्हां कहा है कि जदों उन्हां नूं श्री अकाल तख्त साहिब विखे बुलाया गया सी, उदों भी उन्हां ने स्पष्ट कर दिता सी कि वीडियो विच दिखाई दे रहा व्यक्ति ओह नहीं हन। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वीडियो विच मौजूद व्यक्ति दी कदकाठी अते शरीरिक बनतन भी उन्हां नाल मेल नहीं खांदी, पर इस दे बावजूद कुछ लोग सियासी हित साधन लई इस मामले नूं उछाल रहे हन। उन्हां दोष लगाया है कि धर्म अते धार्मिक संस्थावां दी वरतों सियासी मकसदां लई कीती जा रही है ते उन्हां नूं बदनाम करन दी कोशिश कीती जा रही है। तां हुण तक दे अहम खबरां विच बस इना ही। खबरां दी वधेरे जानकारी अते सुझाव देण दे लई तुसीं साडे नाल जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो। साडी ईमेल आईडी biswani@biswani.com। इस दे नाल ही तुसीं साडे नाल साडे फेसबुक पेज दे ज़रिए भी जुड़ सकते हो। साडा फेसबुक पेज है रेडियो बिस्वानी 107.1। फिर हाजिर होवांगे ताज़ा तरीन खबरां लैके। तक लई दिओ इजाज़त, सत श्री अकाल।

आदाब जी, सत श्रीकाल जी। हां तुसीं बने होए हो जी तुहाडे अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 एएम ते जीआरजे संदेश शलक दे नाल तुसीं बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसीं की गाणा है, तुसीं जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसवानी 101.1 एएम साडा फेसबुक पेज है जी, bisswani@bisswani.com साडी ईमेल आई डी है, जरिया जिहड़ा वी तुहानूं चंगा लगदा है ना तुसीं ओह अपना लो। साडीआं गल्लां बातां पर तुसीं जरूर जरूर करते रहा करो।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रू नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha May.

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660.
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो जदों जदों कॉमेडी फिल्मा दी गल होगी जदों जदों कॉमेडी फिल्मा दा जिक्र होगा सब तो पहला जेड़ा नाम आना हैगा है उस दे विच ओ आना है अंदाज अपना अपना दा। बिल्कुल सही कहा ना मैं? बिल्कुल सही है जी, क्योंकि अमर ते प्रेम है ही इन्हां दी जोड़ी ने खास सी। अमर ते प्रेम नाम दे दो आवारा मुंडे एक अमीर वारिस दा दिल जित्तन दी होड़ विच लगे हुए ने, पर इस विचकार उन्हां दी जेड़ी भिड़ंत क्राइम मास्टर गोगो नाल हो जांदी है। रिलीज वेले फिल्म फ्लॉप रही सी पर इस दे अतरंगे किरदार नू अते तेजा मैं हूं मार्क इधर है वर्गे डायलॉग्स ने ना इस नू बाद विच कल्ट फिल्म बना दिता। अज ए फिल्म कॉमेडी पसंद करन वाले दी पहली पसंद बन चुकी है।

0: जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

जी ताजी अनू जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 ते जी आरचे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए अगली इस लिस्ट दी जिहड़ी फिल्म हैगी ओह भी बहुत खास हैगी ते बहुत सोहणी हैगी ते ओह फिल्म हैगी है यानी कि उसका नाम हैगा है जाने भी दो यार ये फिल्म ना डार्क स्टार यानी कि व्यंग दा बेहतरीन नमूना हैगा कहानी दो फोटोग्राफर्स दी हैगी जो अनजाने विच एक मर्डर दे गवाह बन जांदे ने फिल्म बड़े ही मजाकिया अंदाज विच सिस्टम ते दे भ्रष्टाचार ते लाल फीता शाही दी पोल खोलदी हैगी है ते इस दा क्लाइमैक्स यानी महाभारत वाला नाटक अज भी भारतीय सिनेमा दे सब तो फनी सीन्स विच गिणिया जांदा है जेकर तुसी ये फिल्म नहीं देखी तां समझो तुसी कुछ बहुत वड्डा मिस कर दिता है ते तुसी इसनू एक बारी जरूर देखो

0: जी आनु जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश अलग दिन से बने हुए। कॉमेडी फिल्म होवे ते जिक्र ना होवे हीरा फेरी दा, ए ता नहीं हो सकता। बिल्कुल सही क्या ना बाबू भैया, बहुत ही ज्यादा सोहनी फिल्म है हीरा फेरी। दरअसल हीरा फेरी ना मलयालम फिल्म दा रीमेक है गया। बिल्कुल सही सुन रहे हो तुसी, मलयालम फिल्म दी रीमेक। इस फिल्म ने भारत विच स्लैपस्टिक कॉमेडी नू एक बार फिर तो जिंदा कर दिता सी। कहानी एक मकान मालिक तो दो किराएदारां दी है जिन्हां दे कोल गलती नाल एक फिरौती वाला फोन आ जांदा है। फिल्म दी जान बाबूराव गणपत राव आपचे दा किरदार है जिसनू परेश रावल ने अमर कर दिता। अक्षय कुमार सुनील शेट्टी परेश रावल की तिगड़ी ने जो कमाल इत्थे कीता है ना वो बॉलीवुड विच दोबारा नहीं दिखा। इस मूवी नू लैके एक अलग लैवल का क्रेज है, इस नाल आई थिंक सब सहमत ने।
1: क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सीखियां

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
3: Containers for change rahin apne khali dabbya botla to kamai karo. Tuhade har ik yog khali can, botal ate carton utte 10 cent da refund prapat hunda hai. Isnu assi bin coin kende ha. अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़े दान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी वन सन वन एम दे जी आर चे संदेश अलग दराल से बने हुए। आमिर खान की एक फिल्म है किया जो बहुत खास है किया, ओबियस लिस्ट में शामिल है तो उसे समझ गए होंगे क्योंकि नाम है जी पीके नहीं है। फिलहाल थ्री इडियट से गल कर रही है मैं। इंजीनियरिंग दे तीन दोस्तों की कहानी भारत के एजुकेशन सिस्टम से करारा तंज कसती है पर वड्डे ही मजेदार अंदाज विच फिल्म दिखाती है कि किवें डिग्री के पिछे भजन की बजाय काबिलियत के पिछे भजना जरूरी है। इस विच इमोशंस ते कॉमेडी का अजिहा जबरदस्त बैलेंस हैगा है ना कि हर स्टूडेंट दी ऑल टाइम फेवरेट बन की हैगी है। ऑल इज वैल का मंत्र तो अज भी लोगों की जुबान ते रहा है, मानते हो ना इस चीज़ को? बिल्कुल सही।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश अलग दिनों से बने हुए हो। असि हमेशा कहने ना कि कुछ धमाल मचाइए जो मूड वधिया हुंदा है तो हमने इस लिस्ट विच नाम धमाल फिल्म का भी है क्या, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सोहनी फिल्म है भी। इस विच जो जावेद जाफरी ने एक्टिंग की है ना तो बाकमाल है। खैर बाकी सब भी वधिया ने, क्योंकि ये चार निठले दोस्तों की कहानी है। चार निठले दोस्त ते एक छुपया होया खजाना, यही इस फिल्म की जान है। जब एक मरदा होया चोर उन्होंने वड्डे डब्ल्यू के पिछे दबे करोड़ों रुपए का पता चलता है ना, तो शुरू होंदी है एक पागलावाली रेस। जावेद जाफरी का बचपना ते हवाई जहाज का लाल बटन वाला सीन आज भी लोगों नूं लोट पोट कर देता है। यह फिल्म बिना किसी हीरोइन दे भी फुल एंटरटेनमेंट का पैकेज है।

0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
1: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
5: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
7: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
9: यार, आई एम सो वरीड। एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
8: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
9: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
8: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
10: Ke aalam mein nasha ho jab tere ruksaar dekhu, khuda ne jab tarasha hoga wo asrar dekhu, nigaahon mein basa hai is qadar ye noor tera, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: हाउस।
1: हाँ जी, तो देखो वेला तो हो चुका है कि मैं थोनू कहता टाटा बाय बाय, पर जाते जाते एक फिल्म का जिक्र जो मैं ना किया ना तो वह घाट ची हो जानी है। तो वह फिल्म है जी वेलकम। जी हाँ, एक शरीफ आदमी एक अजि कुड़ी के नाल प्यार हो जाता है जिसके प्राण डुबण के खतरनाक टॉन है कि नहीं। मोना भाई, मजनू भाई, सॉरी मजनू भाई याद है ना थोनू, ते अपनी भैन का विह कर उतावले होंगे ने मजनू भाई और उदय शेट्टी के किरदारा ने इस फिल्म को अमर बना दिता। फिल्म की सिचुएशनल कॉमेडी कलाकार टाइमिंग इन्नी सटीक है कि तुसी इस नूं जिन्नी बार भी देखोगे ना तो हर बार उन्नी ही जोर दे नाल हासे थानू जरूर आऊगी। तुसी इन्हां फिल्मां दे विचों किहड़ियां किहड़ियां देख लियां हैगियां ने मैनू जरूर दस्सियो, ते किहड़ी तुसी देखण दा प्लान करोगे वह भी जरूर दस्सो, क्योंकि मैं इन्ना जरूर श्योर हैगी आ कि जे तुसी इस नूं एक बार देख लिया ना इन्हां फिल्मां नूं तां तुसी मेरे नाल जरूर सहमत रहोगे इस चीज़ नूं लैके कि यह फिल्मां सच्ची बाकमाल हैगियां ने, बहुत ज्यादा शानदार ने। बाकी तुसी जुड़दे रहा करो साडे नाल, रेडियो बिस्वानी 107.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी bisswani@bisswani.com, साडी ईमेल आईडी है जरिया, तुसी जिहड़ा भी अपनाउणा चाहुंदे हो तुसी ओह अपना लो, पर साडे नाल गल्लबात जरूर करदे रहा करो। चलो फिर हुण वेला हो चुका है जी थोड़े तो इजाजत लैन था, थानू टाटा बाय बाय कहन दा, थोड़े तो लैने मैं इजाजत, टाटा बाय कहनी है, कल फिर करती मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

सैंडल्स गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट वुलन गैबा ओपन डेली फ्रॉम 9 AM टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। हैप्पी वेडनेसडे माय पीपल, माय लिसनर्स, क्योंकि मिड वीक आ गया है। जी हाँ, मंडे ट्यूसडे गया और अब काम भी है, मस्ती भी है, सुकून भी है, सब कुछ है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है? वेल, आपको पता ही है, सबसे पहले हमें हेल्दी रहना है, मेंटली फिजिकली एक्सरसाइज करनी है। इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। हैप्पी वेडनेसडे माय पीपल, माय लिसनर्स, क्योंकि मिड वीक आ गया है। जी हाँ, मंडे ट्यूसडे गया और अब काम भी है, मस्ती भी है, सुकून भी है, सब कुछ है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है? वेल, आपको पता ही है, सबसे पहले हमें हेल्दी रहना है, मेंटली फिजिकली एक्सरसाइज करनी है, जिम्बा करना है या झिंगा करना है।

आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, अगर आपको कोई टॉक्सिक लग रहा है, तो उससे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, क्योंकि उसमें आपकी भलाई है, क्योंकि वो एनर्जी रब ऑफ होती है एंड यू डोंट नो कि वो कितने खतरनाक तरीके से मेस अप कर सकती है. सो ऐसे में नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, पॉजिटिव लोगों की ओर बढ़ना है, सोशलाइज करना है, खुश रहना है और एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी रहना. मतलब जो भी एक्सरसाइज आपको अच्छी लगे, चाहे वो रनिंग है, चाहे जिमिंग है, व्हाटएवर योगा है, करिए जरूर, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मेडिटेट कीजिए, बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइजेस पर तो हम ध्यान दे देते हैं, लेकिन मेंटल एक्सरसाइजेस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, विच इज वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आइए करते हैं डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से शुरुआत, क्योंकि हम हेल्दी रिचुअल में विश्वास रखते हैं. क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है. और ऐसे ही अच्छा अच्छा फील करते हुए अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की ओर, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत होगी और शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, अमेजिंग होनी चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी. और उसके लिए आपको क्या करना है, वेल, मजेदार तरीके से गाने को सुनना है, क्योंकि जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो शायद आपको डांस भी करवा दे. सो रेडी रहिए उसके लिए.

माय डार्लिंग आई लव यू, क्या बात है। ये तो मतलब प्यार का इजहार हो रहा है, इजहार मोहब्बत हो रही है। मतलब कुछ गाने जो है ना, ये अर्ली 2000s के, ये इतने ज्यादा प्यारे हैं ना कि आपको लगता है इनको सुनते रहे सुनते रहे। और अगर आप किसी ड्राइव पे जा रहे हो, किसी ट्रिप पे जा रहे हो विद योर बडीज, दिस सॉन्ग एंड दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स आर परफेक्ट परफेक्ट। सो या मजा आता है। और आजकल तो फिर से अर्ली 2000s के गानों को सेलिब्रेट करना और वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी वेडिंग्स पे, पार्टीज में परफॉर्मेंस करते हैं, और ये बहुत चल रहा है, राइट? सो आई लाइक दिस सॉन्ग। एंड यहाँ पर अब आगे की ओर बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। मौसम है, मैक्सिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 22.4 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 21.5 डिग्री सेल्सियस के करीब। और वहीं अगर बात की जाए रात के टेम्परेचर की, तो 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आप देख पाएंगे। नो चांसेस ऑफ बारिश, रात के 8 बजे से थोड़ी बारिश जो है वो लग सकती है, लेकिन उसके अलावा मुझे एज सच नहीं दिख रहा है। थोड़ी बहुत बारिश नॉर्थ ब्रिस्बेन में होने के चांसेस हैं, बट उसके अलावा भी बाकी सब कुछ सही नजर आ रहा है। एयर क्वालिटी है एकदम फेयर। और अब आज वेडनेसडे की बात हो गई है, 17th जून की बात हो गई है, और अब जरा चलते हैं थर्सडे और फ्राइडे की तरफ। दोनों ही दिन बारिश होने के चांसेस बहुत ही कम है, मतलब 10 और 20%, और टेम्परेचर 23 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। बादल जो है वो बीच में थोड़े बहुत होंगे, लेकिन आपको धूप भी मिलने वाली है जितना मैं देख पा रही हूँ। सो या ऐसा रहने वाला है मौसम। और आपको तो पता है आप शर्मा, बाकी सब छोड़ दो, तुम मुझे ये बताओ कि धूप निकलेगी ना, क्योंकि हम सर्दियों में जादू बन जाते हैं, जादू। वेल यू आर राइट इन अ वे, सो ऑफ कोर्स आई नो दैट। एंड आई वुड से कि अगले 2 दिन अच्छी धूप निकलने के चांसेस है, सो गेट रेडी फॉर दैट। और यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, जादू मूवी का ही। आप लोग बोलोगे जादू मूवी का गाना, सुनिए आपको खुद ही पता चल जाएगा।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
3: Fire ants, tuhade ilake vich maujood han. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धन राशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। मौसम का हालचाल भी आपने जान लिया है और अब जरा आपको बता दें कि आपकी फरमाइशें आप हम तक कैसे पहुंचा सकते हो, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कैसे आप अपने फेवरेट गाने हमारे इस प्रोग्राम में सुन सकते हो फरमाइशों के द्वारा, यानी कि रिक्वेस्ट करके, यानी कि रेकमेंड करके। So what are you waiting for? जल्दी से अपने मजेदार से पसंदीदा गानों के साथ आ जाइए, क्योंकि आपकी फरमाइशें लिटरली सबसे ज्यादा खूबसूरत पार्ट है हमारे प्रोग्राम का। सो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है और वो नंबर है +91828887107 आई रिपीट +91828887107 तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमारी तरफ से एक और बहुत ही खतरनाक सा बैंग बैंग गाना।

जी हाँ दोस्तों, और इससे पहले हम आगे की ओर बढ़े, आपको तो पता ही है G7 समिट जो है वो चल रहा है और उसके लिए बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स जो है वो पहुंचे हुए हैं। वो पोडियम पे भी पहुंचे, उन्होंने एक जगह वो एक तस्वीर जो वो हमेशा खिंचवाते हैं, पूरे के पूरे जो मेन लीडर्स हैं हर एक कंट्री के, जो G7 कंट्रीज के लीडर्स हैं वो फोटो खिंचवाते हैं, वो भी हुआ। गेस व्हाट, वहां पर एक तरफ मोदी खड़े थे, एक तरफ ट्रंप खड़े थे, एक तरफ ब्रिजिट मैक्रो खड़ी थी, या आई मीन बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन जो हाईलाइट हुआ मोमेंट वो ये नहीं था कि उन्होंने क्या डिस्कस किया इस पूरे वर्ल्ड के अच्छे के लिए। हाईलाइट ये हुआ कि जॉर्जिया मेलानी एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया वो फिर से एक ही छत के नीचे आए, एक ही आसमान के नीचे आए, एंड दे आर लाइक ओके। फिर से लोग जो है उनको शिप करना शुरू कर दिया, फिर से जो है G7 को एकदम रोमांटिसाइज कर दिया। मतलब G7 इज नॉट अबाउट रोमांस, फॉर हेवन्स सेक, व्हाट आर पीपल इवन डूइंग। बट द थिंग इज कि यहां पर बहुत ही फनी सिचुएशन से मेलानी ने भी, जॉर्जिया मेलानी ने भी एक स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद तो एकदम बवाल हो गया, और वो बवाल जो है वो अच्छे वाले वे में था। ऑफ कोर्स उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, वी आर द मोस्ट फेमस कपल हियर, वी आर द मोस्ट फेमस कपल ऑफ G7, एंड या दैट्स व्हाट शी सेड, एंड पीपल वर लाइक या पीपल वर लाफिंग। देयर वाज यू नो ईओ की चेयरपर्सन भी थी वहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी थे, वहां पर मोदी भी थे, वहां पर बहुत सारे और भी लोग थे, एंड द फैक्ट दैट शी सेड दैट is proves कि यहाँ पर जो भी ये हल्लापंती हम लोग करते हैं, नेटिजन्स करते हैं सोशल मीडिया पे, वो सब के सब वो देखते हैं, दे आर सो एक्साइटेड। वो हमेशा जो है वो हमारा ही फन बना देते हैं, मतलब हम लोग उनको रोमांटिसाइज करते हैं, हम उन लोगों का फन बनाते हैं, लेकिन वो हमारा फन बना देते हैं, वो अब हमको टीज करते हैं, एंड ऑफकोर्स उन लोगों को ज्यादा टीज करते हैं जो कि सच में उनके मीम्स बनाते हैं, उनको रोमांटिक एंगल देते हैं, और या यू नो ब्ला ब्ला ब्ला। सो द थिंग इज कि जॉर्जिया मेलानी खुद कह रही कि यू नो वॉट, वी आर द मोस्ट फेमस कपल इन G7, दैट वॉज द फनीएस्ट फैक्ट। या वी आर गोना टॉक अबाउट द मेन थिंग्स कि उन्होंने क्या कहा, वो हम न्यूज सेशन में करेंगे, बट मैंने सोचा कि ये फनी फनी वाले सेशन में हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जॉर्जिया मेलानी भी एक्सेप्ट कर रही है कि वो सबसे फेमस कपल है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
13: से। To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
2: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
8: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
14: दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM। चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी अर्जुन निवे के साथ। दोस्तों, कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर मैंने कुछ पढ़ा, और जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बात में बहुत ज्यादा दम है, और अगर किसी बात में दम है तो मैं अपने लिसनर से कैसे वो शेयर ना करूं। आई मीन इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपके साथ वो शेयर ना करूं। तो वहां पे लिखा हुआ था कि औरत को बस 3 सुख चाहिए। जो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, एंड खासकर मेरे मेल लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं आपकी हैप्पी लाइफ हो जाए, क्योंकि वाइफ हैप्पी होगी तभी तो लाइफ हैप्पी होगी, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपकी जिंदगी एकदम स्मूथली जाने वाली है, स्मूथली सेल करने वाली है। सो उसमें लिखा हुआ था कि औरत को बस 3 सुख चाहिए। पहला, सुंदर काया। दूसरा, पर्स में माया। जी हाँ, पर्स में माया मतलब पर्स में पैसे। जी हाँ, पहली सुंदर काया, दूसरी पर्स में माया, और तीसरा और एक आवाज में पति बोले
15: मैं अभी आया। जी हाँ, बस फिर क्या है, अगर ये चीजें मिल गई ना, फिर लेडीज को खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। लेडीज यही चाहती हैं। आई एम टेलिंग यू। और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लग रहा था कि ये विजडम मुझे मेरे मेल लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश रहे, मजेदार उनकी जिंदगी बीते। और मजेदार जिंदगी तो तभी बीतेगी जब वाइफ होगी हैप्पी तो लाइफ होगी हैप्पी। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है।

जी हाँ दोस्तों, वही मेसी ने फिर से कमाल कर दिया दिखाया है। और अगर आप लोग फीफा के फैन हो और अगर आप फीफा को देख रहे हो, फीफा वर्ल्ड कप को, तो आपको तो पता ही है क्या हुआ है। सो मेसी ने टाई कर दिया है ऑल टाइम गोल के रिकॉर्ड को। जी हाँ, उन्होंने ये गोल टाई किया है मरी सोलाव क्लोसे के ऑल टाइम रिकॉर्ड के साथ। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये हैट्रिक जो है उन्होंने अल्जीरिया के खिलाफ लगाई। सो लियोनेल मेसी जो है उन्होंने डिलीवर किया है एक सेंसेशनल हैट्रिक इन अर्जेंटीनास 2026 वर्ल्ड कप ओपनर अगेंस्ट अल्जीरिया। उन्होंने प्रोड्यूस किया ए रिकॉर्ड इक्विलिंग परफॉर्मेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। जी हाँ, सो अर्जेंटीना के कैप्टन है। पहले लग रहा था जब लास्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कि ओके मेसी इज रिटायरिंग, और सबको, इनफैक्ट मुझे भी ये लगा था कि मेसी रिटायर हो गए, लेकिन लुक एट हिम, मतलब He is so young, 39, what 39, what 39, I mean, yeah, he is very, very gifted in a way, and he is so talented, that's what I wanna say. So yeah, if you are a fan of Messi, there's a reason to celebrate, मतलब क्या बंदा है ये, जी हाँ, so... यहाँ पर जो है ये लैंडमार्क परफॉर्मेंस जो है इसने आगे सीमेंट किया है मेसी की लेगेसी को एज ही कंटिन्यूज टू रीडिफाइन लॉन्जेविटी एंड एक्सीलेंस एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल। मतलब क्या कहूँ मैं इस इंसान के बारे में। ऑल्दो आई एम अ रोनाल्डो फैन, बट आई रिस्पेक्ट मेसी ऑल्सो वेरी वेरी मच। एंड व्हाट डू यू से, आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है। अगर आप मेसी फैन है तो आर यू हैप्पी? या यू मस्ट बी राइट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
6: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
5: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
6: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
5: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
6: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
7: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
8: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
9: दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे आरजे दिव्या के साथ। और दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो गया है एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा संस्कारी अभिनेत्री को जन्मदिन की मुबारकबाद देने का। आप लोग बोलोगे कि खूबसूरत और संस्कारी, निव्या किसके बारे में बात कर रही हो तुम? वेल, एक ऐसी अभिनेत्री है जिसने एक ऐसी मूवी को किया और उसके बाद सबके सब लोगों ने ये सोच लिया कि अगर बहू होनी चाहिए तो इसके जैसी होनी चाहिए, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। मतलब वो मूवी ने लोगों को इतना इंस्पायर कर दिया, इतना अफेक्ट किया, मतलब लोग लिटरली उस मूवी के फैन हो गए, उस कैरेक्टर के फैन हो गए जिसमें अमृता राव ने उस खूबसूरत से कैरेक्टर को प्ले किया। जी हाँ, मैं विवाह की बात कर रही हूँ। उस मूवी से उन्होंने लोगों के दिल में ऐसी जगह बनाई कि आज भी वो जगह किसी और अभिनेत्री को मिल नहीं सकती है। तो सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको अमृता जी, हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिस्बेन की तरफ से। और मैं यही कहूंगी कि प्लीज वापसी कीजिए, आपके फैंस आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वी ऑल लव यू एंड वी वॉन्ट टू सी यू। आपको हम देखना चाहते हैं बड़े पर्दे पर फिर से, बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल एंड यू आर सो गुड एट योर क्राफ्ट। सो ऑफ कोर्स हम आपको देखना चाहते हैं, आपके फैंस आपका इंतजार कर रहे हैं, फिर चाहे वो OTT हो, चाहे वो बड़ा पर्दा हो, पर प्लीज वापसी कीजिए। एंड या वी लव यू, और आपको तो लिटरली आपका तो इंतजार बड़े बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जो बहू और बहू की ख्वाहिश रखते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे घर में बहू आए, वो भी आपके फैन है। मतलब लिटरली आपने सबको, हर एक एज ग्रुप को अपना फैन बनाया। आया हुआ है। सो ये साल आपके लिए अच्छा रहे, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, और ये साल आप हेल्दी रहे, वेल्दी रहे और बहुत ही अच्छे से वापसी करें प्लीज अपने फैंस के लिए। या दैट इज अ प्लीज। यहाँ पर एक और गाना, अब अमृता जी की बात हुई, अमृता राव की बात हुई है, सो ऑफकोर्स उन्हीं का गाना, उन्हीं की मूवी का गाना हम प्ले करेंगे, जो कि है चले जैसे हवाएं। जी हाँ, बिल्कुल सही।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया में। जी हाँ, खबरों की दुनिया में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, यही आपको बताने का वक्त आ गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेलीग्राम ने बैन लगाने के सरकार के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। जी हाँ, सो भारत में इंडिया में टेलीग्राम को बैन किया गया है और उसके बाद टेलीग्राम ने उसके खिलाफ जो है वो पिटीशन दायर की है। क्या है माजरा, आइए जरा आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने भारत में टेलीग्राम के इस्तेमाल पर 22 जून तक रोक लगा दी है। इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। लॉ के मुताबिक ये याचिका जस्टिस तेजस करिया की कोर्ट में मेंशन की गई, जिन्होंने इसे आज ही तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक सरकार ने यह कदम 21 जून को दोबारा होने वाली नीट 2026 की परीक्षा से पहले लिया है। सरकार के इस कदम की कई लोगों ने आलोचना की है और कहा है कि इस तरह के फैसले से पेपर लीक को नहीं रोका जा सकता है। टेलीग्राम मैसेंजर ने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि आपको सभी शॉपिंग मॉल भी बंद कर देने चाहिए क्योंकि उनमें से किसी एक में चोरी हो सकती है, और सड़कें भी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि कोई तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। जी हाँ, इस मामले में आप क्या कहेंगे जरूर बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: झुमका।
1: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द G7 समिट जो कि हुआ है और उसके बारे में क्या क्या बातें जो हैं वो आ रही हैं सामने। सबसे पहले तो भारत की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं से बात की है। पीएम मोदी ने इन नेताओं से मुलाकात की, तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट की है। पीएम मोदी ने इस दौरान ब्रिटेन, कनाडा, केन्या, मिस्र, जापान और UAE समेत कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, मैंने अपने भाई महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ एक बहुत ही सार्थक बैठक की है। इसमें हमने अलग अलग क्षेत्रों में भारत UAE संबंधों और हमारी व्यापक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। जी हाँ, इसी के साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्रेस स्टार्मर से मुलाकात के बारे में भी पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि एवियन में प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर के साथ हुई अच्छी बैठक हुई और भारत ब्रिटेन संबंधों के लिहाज से पिछला साल शानदार रहा है। ट्रेड डील ने आर्थिक सहयोग के कई रास्ते खोले हैं। आज की बातचीत इस बात पर केंद्रित थी कि भारत ब्रिटेन संबंधों को और कैसे मजबूत किया जा सकता है।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं। आ

इमेज खराब, काम गलत, न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

जी हाँ दोस्तों, यहाँ खबरों की बात हो रही है और वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने हमारी बात मानी तो उन्हें बहुत फायदा होगा। जी हाँ, आपको तो पता ही है, पिछले से पिछले कल एक बहुत ही बड़ा समझौता हुआ है, एटलीस्ट पेपर्स पर तो हुआ है। बाकी एग्जीक्यूशन कैसा होने वाला है वो तो अभी वक्त बताएगा, जो थोड़े दिनों में होने वाला है। मतलब थिंग इज कि पेपर पे हो गया और उसके बाद जो है जेडी वेंस बड़े ही अच्छे से बोल रहे हैं। मैंने एक चीज देखी है कि जब भी ऐसा कोई समझौता होता है, एक कंट्री बोलती है अरे हम तो जीत गए थे, वो सामने से भीख मांगने आ गए, और दूसरी कंट्री बोलती है अरे हमने उन्हें तो छोड़ दिया, नहीं तो कंट्री ही बर्बाद हो जाती अगर हम दो चार और हमले कर देते। सो ऐसा कुछ सुनने को हमें भारत और पाकिस्तान के विवाद के टाइम भी मिला था, अब यहाँ पे भी ऐसा ही मिल रहा है। ईरान एक नैरेटिव दे रहा है कि उन्होंने अमेरिका को, इसराइल को हरा दिया है, मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है इसलिए वो पीछे हट रहे हैं। वही अमेरिका कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ईरान वो सारी बातें मान रहा है जो हम चाहते हैं और इसलिए हम उनको छोड़ रहे हैं। जी कौन सी बातें मान रहा है, वो बातें तो पहले भी मनी हुई थी जो वो अब मान रहा है। सो यहां पर जेडी वेंस क्या कह रहे हैं, आइए जरा जानते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ शुरुआती समझौते के प्रावधानों के बारे में कहा है कि अगर ईरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है तो अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी वापसी का रास्ता खोलने के लिए तैयार है। फोकस न्यूज के एक कार्यक्रम में जेडी वेंस ने ईरान के साथ ट्रंप प्रशासन के समझौते की तुलना बराक ओबामा के शासन में हुए समझौते से की है। उन्होंने कहा कि ओबामा के दौर में ईरान के साथ हुई डील बुरी तरह नाकाम रही है और ये समझौता उस डील से बिल्कुल विपरीत है। ओह माय गॉड, जेडी वेंस ने कहा कि ओबामा वाली डील और इस डील में फर्क ये है कि इसके तहत परमाणु हथियार नहीं बन सकते, वे यूरेनियम को एनरिच बिल्कुल नहीं कर सकते और न ही उसका भंडारण कर सकते। उन्होंने कहा इस समझौते के तहत ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा, अरे वो तो पहले भी खुला था, और अगर ईरान सही बर्ताव करता है तो उसे कई तरह के फायदे मिल सकते हैं, अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। Yeah, that's what he said. जेडी वेंस शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और बीबीसी फारसी के मुताबिक वेंस ने मंगलवार को सीरियस एग्जम रेडियो नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में कई बार इस बात पर जोर दिया है कि ईरान को आर्थिक रूप से जो लाभ होगा उसकी भरपाई किसी भी तरह से अमेरिकी संसाधनों और संपत्तियों से नहीं की जाएगी। तो अगर अमेरिका नहीं करेगा तो कौन करेगा, क्योंकि ईरान तो मांग रहा है भरपाई, अब भरपाई होगी कहां से? लेट्स सी। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, खबरों की बात हो रही है और वहीं अमेरिका युद्ध विभाग ने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द हटा दिया। जी हाँ, अमेरिकी युद्ध विभाग ने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदल दिया है। अब इसका आधिकारिक नाम यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया है, यानी अब हिंद प्रशांत कमांड से हिंद शब्द हटा दिया गया है और उसका पुराना नाम वापस बहाल कर दिया गया है। मूल रूप से 1 जनवरी 1947 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के कार्यकाल के दौरान स्थापित यह कमांड 70 से अधिक वर्षों तक यूएस पैसिफिक कमांड के नाम से ही काम करती रही। बाद में इसे इंडो शब्द भी जोड़ा गया। यह अमेरिका के एकीकृत लड़ाकू कमांडों में से सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कमांड बनी रही। यूएस पैसिफिक कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूएस पैकॉम के पुराने नाम को फिर से बहाल करना कमांड की गहरी ऐतिहासिक जड़ों का सम्मान और प्रशांत क्षेत्र में सेवा देने वाले सभी लोगों में गर्व और सामूहिक भावना को बढ़ावा देता है। इसके आगे लिखा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका से लेकर कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध और कई मानवीय अभियानों के दौरान यूएस पैकॉम नाम दशकों की सैन्य विरासत और लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय साझेदारियों का प्रतीक है। यूएस पैसिफिक कमांड के मुताबिक यूएस पैकॉम की जिम्मेदारी का विशाल क्षेत्र अमेरिका के पश्चिम तट के समुद्री इलाकों के से लेकर भारत की पश्चिमी सीमा तक फैला है और ये बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है।

जी दोस्तों, इसी के साथ कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी। आप लोग बोलोगे कि निवेश सुनो, मैं तुम सिर्फ कल ही सोशल मीडिया क्यों चलाती हो, आज भी चला लिया करो। वेल वेल वेल, क्योंकि ये मैंने देखा कल था, तो मैंने सोचा कि सही बताना चाहिए, सच बताना चाहिए। मेरे लिसनर सब कुछ सच डिजर्व करते हैं। सो वहां पर मैंने एक मीम देखा और उस मीम में सच्चाई बयां की गई थी और वो सेंस बना रही थी और वो सच्चाई है या नहीं, एक्चुअली मैं आपको डिसाइड करने के लिए कहूंगी। जी हाँ, तो वहां पे लिखा हुआ था कि द एम इन मैन स्टैंड्स फॉर मनी। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, द एम इन मैन स्टैंड्स फॉर मनी, द डब्ल्यू इन वुमेन स्टैंड्स फॉर विथड्रॉ। या फिर से सुनिएगा, द एम इन मैन स्टैंड्स फॉर मनी, द डब्ल्यू इन वुमेन स्टैंड्स फॉर विथड्रॉ। आई कांट टीच यू ऑल एवरीथिंग, राइट? मतलब या यू नो व्हाट यू नीड टू डू, इट्स लाइक द जॉब इज हिज, और आई मीन पैसा कमाना जो है वो उनका काम है, पैसा विथड्रॉ करना जो है वो लेडीज का काम है। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, तुम बहुत ज्यादा एक तरफा होगी, तुम सिर्फ और सिर्फ लेडीज का ख्याल रखते हो, व्हाट अबाउट अस, मतलब हमारा क्या होगा? ठीक है ठीक है, आपका भी रखा जाएगा। सो यहाँ पर लेडीज तो खुश होगी होंगी अभी के लिए, क्योंकि बात में दम है भाई। मनी स्टैंड करती है, एम स्टैंड करता है मेन में मनी के लिए, और डब्ल्यू वुमेन में स्टैंड करता है विड्रॉ के लिए। तो मनी वो कमाएंगे, विड्रॉ आप करो, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। मतलब मुझे सब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, राइट? यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, और फीफा वर्ल्ड कप के एक मैच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हुई, एक प्रूव किया गया फैक्ट कि अगर आप में दम है, अगर आप में दृढ़ निश्चय है और अगर आप मेहनत कर सकते हो और अगर आप में वो मतलब जीतने की जो जिद है, तो देयर इज नो वे कोई भी आपको हरा पाएगा, चाहे फिर वो कोई बहुत ही बड़ा कंटेंडर ही क्यों ना हो, बहुत ही पावरफुल कंटेंडर ही क्यों ना हो। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेन एंड केप वेर्दे। जी हाँ, केप वेर्दे के जो गोलकीपर ने किया है ना, लिटरली स्पेन में मैच के खिलाफ वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। सो केप वेर्दे के जो गोलकीपर है जोसिमार जोस एवेरा डियास, जिनको वोजीना भी कहा जाता है, और वो ओवरनाइट वर्ल्ड कप सेंसेशन बन गए हैं उनकी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस के लिए जो कि उन्होंने स्पेन के अगेंस्ट दिखाई है। जी हाँ, 40 साल के क्लीन शीट एंड टूर्नामेंट डेब्यूटेंट्स केप वेर्दे के ये जो चैंपियन है, उन्होंने लिटरली प्रूव कर दिया है कि कैसे जीता जाता है मैच। मतलब स्पेन, लिटरली जब स्पेन की बात होती है तो ऐसा कहा जाता है कि ओहो, ये तो फीफा वर्ल्ड कप के बड़े चैंपियंस में से एक है, मतलब उनको कोई कैसे ही हराएगा। वेल ऐसे ही हराएगा। एंड गेस व्हाट, उनकी फॉलोइंग जो कि कुछ हजार थी, वो 6 मिलियन हो गई ओवरनाइट। मतलब बंदे ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया कि 6 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए ओवरनाइट। मतलब लोगों ने इतना ज्यादा इंस्पिरेशनल मान लिया उनको कि उन्होंने कहा कि ये बंदा है भाई, फीफा वर्ल्ड कप की असली यूएसपी इसने दिखाई है। आई डोंट नो अबाउट एनी अदर पर्सन, बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली द विनर फॉर अस। जी हाँ, सो या मैं भी कहूंगी कि अगर आपने वो मैच नहीं देखा है तो हाइलाइट्स में जरूर देखिएगा, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। मतलब स्पेन, जिसको लग रहा होता है के बैठते, अरे इनके खिलाफ तो हम इजिली जीत जाएंगे, वो गोलकीपर ने बता दिया कि कैसे जीता जाता है मैच। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, एंड आई होप आप उसके लिए रेडी हो, क्योंकि उसमें पुराने गाने होते हैं, कुछ हमारी तरफ से, कुछ आपकी फरमाइशें, पुराने किस्से, पुराने फसाने, पुराने तराने, जी हाँ सारी चीजें पुरानी, और ये पुराने गाने हमारे दिल को इतना सुकून पहुंचाते हैं, हमें फील करवाते हैं कि रियलिटी एंड प्योरिटी सब उसी एरा में थी, अब तो सब कुछ गड़बड़ है। जी हाँ, सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, जल्दी से शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड की। जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो है मेरे महबूब तेरे दम से, इससे शुरुआत होगी आज के सेगमेंट की, और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी, जब भी बात होती है खूबसूरती की, जब भी बात होती है एक ऐसी स्माइल की जिसपे दुनिया अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाए, जब बात होती है खूबसूरती की और वो बाकमाल अदायगी की, तो हमें याद आती है हमेशा मधुबाला। जी हाँ, मधुबाला के बारे में मैं आज इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मधुबाला की बायोपिक की बात हो रही है और ये बायोपिक में धुरंधर की फेम एक्ट्रेस जो है वो काम करने वाली है और इसे बनाएंगे संजय लीला भंसाली। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये चीज अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई तो आप कितने निराश होंगे। जी हाँ, वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा ये कहा जाता है। जी हाँ, ये उपाधि मिली है मधुबाला को। मतलब जब वो हंसती थी तो फूल खिल जाते थे। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता था कि लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उनको देखती रह जाती थी। मतलब बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े एक्टर्स और बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने यही कहा है कि अगर आप मधुबाला को सामने से देख लेते तो ऐसा लगता था कि वो मैली हो जाएंगे अगर आप उनको हाथ लगा देंगे। तो वैसी खूबसूरती थी मधुबाला की और उनकी अदायगी, ऑफकोर्स उनकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक रही है और एंड में तो वो बहुत ही ज्यादा अकेली भी पड़ गई थी। और ये सारा का सारा जो है स्टोरी वो कवर करने वाले हैं संजय लीला भंसाली। जी हाँ, और सारा अर्जुन इसमें मधुबाला का कैरेक्टर प्ले करेंगी। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपने धुरंधर देखी है तो क्या आपको लगता है कि सारा अर्जुन सच में इसमें अच्छे से जस्टिस कर पाएंगी मधुबाला के कैरेक्टर के साथ? क्योंकि मधुबाला की बायोपिक पहले भी बन सकती थी लेकिन किसी ने नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि अगर ये अच्छे से नहीं बनाई गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि आपको सच में लगता है कि मधुबाला के कैरेक्टर के साथ कोई भी जस्टिस कर पाएगा? यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से,

दोस्तों, रफी साहब की आवाज के बारे में क्या कहा जाए, खूबसूरत आवाज, खूबसूरत। जी हाँ, और अपनी इस आवाज की कदर के लिए तो उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को एकदम उनकी औकात दिखा दी। जी हाँ, एंड औकात दिखा दी आई थिंक इज अ काइंड ऑफ थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक वर्ड, बट मैं कहूंगी कि उन्होंने अपनी आर्ट के साथ हमेशा हमेशा सच्चाई के साथ जो है वो पेश आए हैं। रफी साहब ने अपनी आर्ट के साथ जो जस्टिस किया है हमेशा, फिर चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो कोई भी फिल्म क्यों ना हो, अपनी आर्ट के साथ जस्टिस करने के लिए उन्होंने कम पैसे भी लिए हैं। अपनी आर्ट के साथ जस्टिस करने के लिए उन्होंने कभी किसी, अगर डायरेक्टर के पास पैसे नहीं है तो बिना पैसे के भी गाना गा दिया है, क्योंकि वो अपनी आर्ट को प्यार करते थे, उन्हें गाना गाना बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता था। जी हाँ, रफी साहब के गाने हम यहाँ पर सुन रहे हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पर रफी साहब अपनी आर्ट को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे कि एक वक्त था कि राज कपूर साहब संगम का एक गीत रफी साहब से गवाना चाहते थे अपनी महफिल में। जी हाँ, अब आपको तो पता ही है, राज कपूर साहब की महफिल जो है वो हमेशा से बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी रही है, चर्चित रही है, बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस उसमें शामिल हुआ करती थी, शराब होती थी, जाम होता था, क्या नहीं होता था। तो एक वक्त की बात है, रफी साहब को भी उसमें आने के लिए इन्वाइट किया गया। अब रफी साहब पहले जाना तो नहीं चाहते थे, पर उन्होंने सोचा कि राज कपूर इन्वाइट कर रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ, और वहां पर रफी साहब से संगम का खूबसूरत सा एक गाना गाने के लिए रफी साहब को राज कपूर ने कहा, लेकिन रफी साहब ने उन्हें मना कर दिया। जी हाँ, उन्हें मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ये जो जगह है वो उस गाने के लिए ठीक नहीं है, गाने के लिए। जी हाँ, मतलब राज कपूर को उन्होंने दिखा दिया कि जो चीज मेरी आर्ट जो है वो मेरी पूजा है। जी हाँ, मैं खुदा मानता हूँ अपनी आर्ट को, और ऐसे में मैं इसके साथ कहीं भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी नहीं और किसी और जगह पे भी नहीं। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए जो कि मैं प्ले करने वाली हूँ, वो मेरी तरफ से नहीं है, वो है एक फरमाइशी गीत, और ये फरमाइश आई है हमारे बहुत ही खास लिसनर विशाल जी की तरफ से। गाना है जुल्फ बिखरती चली आई हो, क्या बात है, रफी साहब का ही है ये भी गाना। सुनते हैं इसका और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें, लेकिन पहले रफी साहब को अच्छे से याद कर लेते हैं इस गाने के साथ।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे अब कल। तब तक के लिए मजे में रहिए, फन करते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और रेडियो ब्रिजवाणी सुनते रहिए, क्योंकि रेडियो ब्रिजवाणी पे हम सुनिश्चित करते हैं कि आपको एंटरटेन कैसे रखना है और आप स्ट्रेस मुक्त भी रहेंगे। सो बस यही करते रहिए और मजे में रहिए। जी हाँ, बाय, सी यू, टाटा, मिलेंगे अब आपसे कल। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा गाना।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन में स्टेट ऑफ ओरिजिन का क्रेज, मरून रंग में रंगी इमारतें। ब्रिस्बेन से पहले खबर वहां के सबसे बड़े खेल के रोमांच को लेकर है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी स्टेट ऑफ ओरिजिन के गेम 2 के लिए आज पूरा ब्रिस्बेन शहर मैरून रंग की रोशनी से नहाया हुआ है। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने आज रात स्टोरी ब्रिज, किंग जॉर्ज स्क्वायर और कंगारू प्वाइंट ब्रिज को मरून लाइटों से सजाया है ताकि अपनी टीम क्वींसलैंड का हौसला बढ़ाया जा सके। वहीं साउथ ब्रिस्बेन में खुला नया अर्जेंट केयर क्लिनिक हेल्थ सेक्टर से ब्रिस्बेन के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर मार्क बटलर ने आज सुबह ब्रिस्बेन के बुलुनगाबा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश के 137वें यानी कि 137 मेडिकल केयर अर्जेंट केयर क्लिनिक की शुरू होने का ऐलान किया। वहीं ब्रिस्बेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 हुआ कैंसिल। जी हां, ब्रिस्बेन के सिनेमा और आर्ट लवर्स के लिए एक मायूस करने वाली खबर है। साल 2026 में होने वाले ब्रिस्बेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को इस साल के लिए कैंसिल कर दिया गया है। वहीं ब्रिस्बेन नदी में नए ग्रीन ब्रिज का काम तेज। सिटी डेवलपमेंट की बात करें तो ब्रिस्बेन नदी पर बन रहे नए कंगारू प्वाइंट ग्रीन ब्रिज का काम आज एक और अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। काउंसिल के मुताबिक पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए बन रहे इस पुल का मुख्य हिस्सा लगभग तैयार है। वहीं ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर नए पैसेंजर गाइडलाइंस। अगर आपको कोई, आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त ब्रिस्बेन ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए अपडेट जरूरी है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से नए और अपग्रेडेड सिक्योरिटी स्कैनर्स का ट्रायल शुरू किया गया है। इसके तहत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स के बैगेज चेकिंग प्रोसेस को और तेज किया जा रहा है। वहीं क्वींसलैंड में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। और आखिर में ब्रिस्बेन के मौसम का हाल। ब्रिस्बेन और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह सीजन की सबसे घनी धुंध और कोहरा देखा गया। मौसम विभाग ने आज रात से तापमान में और गिरावट आने की चेतावनी जारी कर दी है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले भारत मोनाको के बीच नई आर्थिक साझेदारी। आज की सबसे पहली बड़ी खबर बिजनेस और टेक्नोलॉजी से। भारत और मोनाको के बीच आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए एक बड़ी बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के नाइस शहर में चल रहे भारत इनोवेट्स 2026 इवेंट के दौरान मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट से मुलाकात की। वहीं भारतीय कृषि एक्सपोर्ट में बड़ा उछाल। किसानों और खेती किसानों से जुड़ी एक शानदार खबर। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन अभिषेक देव ने आज सुबह बताया कि भारत का कृषि एक्सपोर्ट अब लगभग 500 अलग अलग प्रोडक्ट्स तक पहुंच गया है। वहीं मुंबई के वर्ली सी फ्रंट पर फिट इंडिया साइक्लोथॉन। फिटनेस लवर्स के लिए मुंबई में एक बड़ा दिन है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत आज केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया मुंबई के मशहूर वर्ली कोस्टल साइकिल ट्रैक पर फिट इंडिया साइक्लोथॉन को लीड कर रहे हैं। वहीं शेयर बाजार की पॉजिटिव शुरुआत। फाइनेंशियल मार्केट से खबर है कि आज सुबह गिफ्ट निफ्टी में बढ़त के साथ भारतीय शेयर बाजार ने हरे निशान में शुरुआत की। वहीं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को मिला बड़ा प्रोजेक्ट। पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कंपनी ने इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत एक बहुत बड़ा टेंडर जीत लिया है। इसी के साथ अब चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले फ्रांस में G7 लीडर्स समिट का आयोजन। ग्लोबल पॉलिटिक्स की

0: मिडिल ईस्ट संकट पर G7 और अरब देशों की बैठक। इसी G7 समिट के साइडलाइंस पर मिस्र, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात के नेताओं ने भी G7 देशों के साथ एक खास मुलाकात की। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को कम करना है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शुक्रवार तक पूरी तरह खुलेगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। जी हाँ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति के साथ फ्रांस में हुई मुलाकात के बाद कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस शुक्रवार तक जहाजों की आवाजाही के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। वहीं कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, इंटरनेशनल मार्केट में से आम जनता के लिए राहत की खबर। ईरान से ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई फिर से शुरू होने की उम्मीदों के बीच ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम गिरकर $80 प्रति बैरल से भी नीचे आ गए। वहीं केविन वॉश संभालेंगे फेडरल रिजर्व की कमान। अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। केविन वॉश आज यूएस फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन के रूप में अपनी पहली आर्थिक आधिकारिक मीटिंग करने जा रहे हैं। वहीं लेबनान में सीज फायर के बावजूद ड्रोन हमले, मिडिल ईस्ट से एक चिंताजनक खबर भी आ रही है। लेबनान की मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते और सीज फायर की कोशिशों के बावजूद दक्षिण लेबनान के नावातिह इलाके में कुछ ड्रोन हमले हुए हैं। इसी के साथ अब चलते हैं खेल जगत की खबरों की तरफ। सबसे पहले लियोनेल मेसी की ऐतिहासिक हैट्रिक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्पोर्ट्स की दुनिया में आज हर तरफ लियोनेल मेसी का ही नाम गूंज रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले ग्रुप मैच में 38 साल के मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ एक शानदार हैट्रिक लगाई और अर्जेंटीना को 3-0 से जीत दिलाई। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी का छठा वर्ल्ड कप। फुटबॉल इतिहास में एक और बड़ा पन्ना जुड़ गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी दोनों ही मेंस फुटबॉल के इतिहास में 6 अलग अलग वर्ल्ड कप एडिशंस खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं एर्लिंग हालैंड का वर्ल्ड कप डेब्यू में धमाका। नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने अपने पहले ही वर्ल्ड कप मैच में कमाल कर दिया है। 25 साल के हालैंड ने इराक के खिलाफ मैच में 2 बेहतरीन गोल दागे, जिसकी बदौलत नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट में अपने सफर की धमाकेदार शुरुआत की। वहीं फीफा वर्ल्ड कप में 68 साल बाद बना अजीब रिकॉर्ड। इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में एक अनोखा रिकॉर्ड देखने को मिला है। पिछले 68 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक ही दिन में वर्ल्ड कप के 4 मैच ड्रॉ पर छूटे। जी हाँ, वहीं आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में दीप्ति शर्मा का जलवा। क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। आईसीसी महिला T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में वेस्ट इंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज फिर से नंबर 1 पर बन गई हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria.
3: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
4: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
3: ऐसा क्या खास है वहाँ?
4: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
3: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
4: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
5: तुहाडे इलाके विच मौजूद

0: हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan
9: और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: 5235।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: जल्दी चलो जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
0: ओके तुम्हारी मैं जा। लगता रूम में रह गया।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। प्री सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में। वेद

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

सब तो पहला जिहड़ा नाम आना है उस आना है अंदाज अपना अपना दा, बिल्कुल सही कहा ना मैं बिल्कुल सही है जी, क्योंकि अमर प्रेम है ही इन्हां दी जोड़ी ने खास सी। अमर ते प्रेम नाम दे दो आवारा मुंडे एक अमीर वारिस दा दिल जित्तन दी होड़ विच लगे हुए ने, पर इस विचकार उन्हां दी जिहड़ी भिड़ंत क्राइम मास्टर गोगो नाल हो जांदी है। रिलीज दे वेले फिल्म फ्लॉप रही सी, पर इस दे अतरंगी किरदार नूं अते तेजा मैं हूं मार्क इधर है वर्गे डायलॉग्स ने ना इस नूं बाद विच कल्ट फिल्म बना दिता। अज ए फिल्म कॉमेडी पसंद करन वालियां दी पहली पसंद बन चुकी है।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading
1: Containers for
0: 10 cents
1: today.
0: माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: जी आयनु जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो जी आर संदेश अलग दिन से बने हुए कॉमेडी फिल्म होवे ते जिक्र ना होवे हेरा फेरी दा ए ता नहीं हो सकता। बिल्कुल सही क्या ना बाबू भैया, बहुत ही ज्यादा सोहनी फिल्म है हेरा फेरी। दरअसल हेरा फेरी ना मलयालम फिल्म दा रीमेक है गया। बिल्कुल सही सुन रहे हो तुसी, मलयालम फिल्म दी रीमेक। इस फिल्म ने भारत विच स्लैपस्टिक कॉमेडी नू एक बार फिर तो जिंदा कर दिता सी। कहानी एक मकान मालिक तो दो किराएदारां दी है जिन्हां दे कोल गलती नाल एक फिरौती वाला फोन आ जांदा है। फिल्म दी जान बाबूराव गणपत राव आपचे दा किरदार है जिसनू परेश रावल ने अमर कर दिता। अक्षय कुमार सुनील शेट्टी ते परेश रावल दी तिगड़ी ने जो कमाल इत्थे कीता है ना वो बॉलीवुड विच दोबारा नहीं दिखिया। इस मूवी नू लैके एक अलग लेवल दा क्रेज है, इस नाल आई थिंक सब सहमत ने।
1: एक दो गल्लां करनियां सी थोड़ी जिंदगी वास्ते ठीक रहणगियां क्योंकि मेरी जिंदगी च मैं चीजां सिखियां

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com आज ही विजिट करें।
2: कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 107.1 जी आर जी संदेश अलग दराज से बने हुए। आमिर खान की एक फिल्म है किया जो बहुत खास है किया, ओबियस लिस्ट में शामिल है तो उसे समझ गए होंगे क्योंकि नाम है जी पी के नहीं है। फिलहाल थ्री इडियट्स से गल कर रही है मैं। इंजीनियरिंग दे तीन दोस्तों की कहानी भारत के एजुकेशन सिस्टम से करारा तंज कसती है पर वड्डे ही मजेदार अंदाज विच फिल्म दिखाती है कि किवें डिग्री के पिछे भजन की बजाय काबिलियत के पिछे भजना जरूरी है। इस विच इमोशंस ते कॉमेडी का अजिहा जबरदस्त बैलेंस हैगा है ना कि हर स्टूडेंट दी ऑल टाइम फेवरेट बन की है की है। All is well दा मंत्र ता अज भी लोकां दी जुबान ते रहिंदा हैगा। मानते हो ना इस चीज़ नूं तुसीं? बिल्कुल सही।

0: मेनू सारा कुछ मिले सुहाना साहब तो।
1: ताजी वेलकम है जी, जी आया नु एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोने वन सर वन एम ते जी आज एक संदेश अलग दिन से बने हुए। देखो जादू की जप्फी नु ता असि सब कहने है ना जो तो कोई उदास हो ता चल जादू की जप्फी दे देना ए वी ता किस फिल्म का डायलॉग है तो हूं थोनू सब नु पता लग गया हूं मैं किस फिल्म की गल कर रही हूं। फिल्म का नाम है जी मुना भाई MBBS। एक गुंडा अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए डॉक्टर बनने के लिए ठान लेता है जिस तो बाद मेडिकल कॉलेज के रूल्स मुना भाई की भाईगिरी वाले अंदाज विचकार जो टकरा हुंदा है ना वह थानू हसन ते मजबूर कर देवेगा। तो इस फिल्म ने लोगों नू जिवें पहला जिक्र किया सी ना कि जादू की जप्फी वर्गा प्यारा शब्द दिता है। मुना ते सरगट की जोड़ी अज भी सब की फेवरेट है।

बहुत ही ज्यादा सोहनी फिल्म है। अभी इस विच जो जावेद जाफरी ने एक्टिंग की है ना, तो बाकमाल है। बाकी सब भी बढ़िया ने, क्योंकि ये चार निठले दोस्तों की कहानी है। चार निठले दोस्त थे, एक छुपिया हुआ खजाना, यही इस फिल्म की जान है। जब एक मरदा हुआ चोर उन्होंने वड्डे डब्ल्यू के पिछे दबे करोड़ों रुपए का पता चलता है ना, तो शुरू होती है एक पागला वाली रेस। जावेद जाफरी का बचपना ते हवाई जहाज का लाल बटन वाला सीन आज भी लोगों लोटपोट कर देता है। ये फिल्म बिना किसी हीरोइन दे भी फुल एंटरटेनमेंट का पैकेज है।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश अलग दिन से बने हुए हो। असि हमेशा कहने ना कि कुछ धमाल मचाइए जो मूड वधिया हुंदा है, तां इस लिस्ट विच नाम धमाल फिल्म का भी है क्योंकि बहुत

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

हाँ जी, तो देखो वेला तो हो चुका है कि मैं तुहानू कहदा टाटा बाय बाय, पर जाते जाते एक फिल्म का जिक्र जो मैं ना किया ना तो वह घाट च ही हो जानी है। तो वह फिल्म है जी वेलकम। जी हाँ, एक शरीफ आदमी एक अजिही कुड़ी के नाल प्यार हो जाता है जिसके भरा डब्बड़ के खतरनाक टॉन है कि नहीं मुना भाई मजनू भाई, सॉरी मजनू भाई याद है ना थोनू। तो अपनी भैन का विह करन के लिए उतावले होंगे ने मजनू भाई, और शैठी के किरदारा ने इस फिल्म को अमर बना दिता। फिल्म की सिचुएशनल कॉमेडी कलाकार टाइमिंग इन्नी सटीक है कि तुसी इस नू जिनी बार भी देखोगे ना तो हर बार उन्नी ही जोर दे नाल हास्से थानू जरूर आऊगी। तुसी इन्हां फिल्मां दे विचों किहड़ियां किहड़ियां देख लियां हैगियां ने मैनू जरूर दस्सो, तो किहड़ी तुसी देखण दा प्लान करोगे वह भी जरूर दस्सो, क्योंकि मैं इन्ना जरूर श्योर हैगी आ कि जे तुसी इस नू एक बार देख लिया ना इन्हां फिल्मां नू तां तुसी मेरे नाल जरूर सहमत रहोगे इस चीज नू लैके कि यह फिल्मां सच्ची बाकमाल हैगियां ने, बहुत ज्यादा शानदार ने। बाकी तुसी जुड़दे रहा करो साडे नाल, रेडियो बिरसोनी 107.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, bersoni@bersoni.com साडी ईमेल आईडी है, जरिया तुसी जिहड़ा भी अपनाउणा चाहुंदे हो तुसी ओह अपना लो, पर साडे नाल गल्लबात जरूर करदे रहा करो। चलो फिर हुण वेला हो चुका है जी थोड़े तो इजाजत लैन था, तुहानू टाटा बाय बाय कहन दा, तां थोड़े तो लैनी मैं इजाजत, ते टाटा बाय कहनी है, ते कल फिर करदी मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: मैया सुकु सुकु
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकु सुकु।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम जोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम जोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम जोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनदीप, वन ऑफ द मीट ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge. Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka. अच्छा, वो क्या? अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service.

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या कहा?

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

जीवन अनमोल है, ये जीवन इसका कोई मोल नहीं है, आप कितने ही रुपए खर्च कर लें। कहते हैं जिसे इस दुनिया से जाना है ना, उसे आप बचा नहीं सकते। और यकीन मानिए, जो इस दुनिया से जा रहा है, अगर आप उसका सारा धन वैभव भी ले लें तो वो खुशी खुशी दे देगा अपने इस जीवन के लिए। लेकिन जीवन रहते हम इस जीवन को न तो जान पाते हैं, न समझ पाते हैं और ना ही पहचान पाते हैं। आइए आज वक्त रहते अपने जीवन को जानने की एक और कोशिश करते हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर हमारे खास सफर जीवन आधार में। आइए इस अगले गीत के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और रहिए सताक्षी के साथ।

0: चिंता। आपने भी ये जरूर सुना होगा श्रोताओं कि चिंता चिता के समान होती है, और आज के दौर में हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है चिंता, वो हम सबको घेरे हुए है। मैं हूँ, आप हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चिंता में डूबे रहते हैं। और चिंता कोई एक नहीं होती, चिंता के अनेक रूप हैं। आज इसकी चिंता तो कल उसकी चिंता, या फिर ये कहें एक ही वक्त में न जाने कितनी चिंताएं हम करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये चिंता ही है जो आपको चिता तक ले जाती है। जिसको एक बार चिंता हो गई ना, वो डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाता है, लेकिन उसका रोग खत्म नहीं होता, बल्कि एक रोग से अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। आप अगर पढ़ने और जानने बैठेंगे, आप समझने बैठेंगे, तो ज्यादातर बीमारियां आज के समय में जो हो रही हैं, वो इसी चिंता के कारण ही हैं। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य विचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM, और रहिए सताक्षी के साथ।
1: के कदम देखो रम पम पम

जीवन को जानने, समझने और खूबसूरत बनाने का ये जो सफर है जीवन आधार, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। आपके साथ है सताक्षी। चलिए अपने जीवन को एक नया आधार देते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

ऐसा कोई न मिला हमको, हमको दे उपदेश। ऐसा कोई न मिला हमको, हमको दे उपदेश। भव सागर में डूबता कर गई काढ़ कैस। रेडियो ब्रजवाणी 1701 AM पर जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। और कबीरदास जी कहते हैं श्रोताओं कि हम संसारी जन जो हैं वो इस बात को लेकर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि हमको कोई पथ प्रदर्शक नहीं मिला, हमको कोई राह दिखाने वाला नहीं मिला, रास्ता बताने वाला नहीं मिला जो उपदेश देता। और हम जो भव सागर में डूब रहे हैं, जो बिना ज्ञान के हम गोते लगा रहे हैं, हम इस संसार में चक्कर लगा रहे हैं, कोई होता जो हमको पकड़ कर निकाल लेता, है ना। अक्सर जब आप फेलियर्स का सामना करते हैं तो ये लगता है कि यार कोई होता जो हमें सही राह दिखा पाता, जो हमें सही और गलत का भेद बता पाता, तो शायद हमारी जिंदगी में फेलियर्स आते ही नहीं। लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि जब तक आप जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, कोई आपको कितना भी संभाल ले, आप गलत करने से बच नहीं पाएंगे। जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको सही रास्ते पर लाते हैं और सही और गलत की पहचान कराते हैं। और ऐसे ही एक्सपीरियंस के नाम ये अगला गीत है। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रजवाणी पर जीवन आधार।

जीवन के आधार में रचा बचा ये साथ है हमारा, ये साथ है जीवन के आधार से जुड़ा जीवन आधार। जी हाँ, जिंदगी आसान तो है, लेकिन ये जिंदगी तब आसान लगती है जब इस जिंदगी को हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं, वरना ये जिंदगी हर रोज एक नई मुश्किल से भरती चली जाती है। आइए अपनी जिंदगी को और करीब से जानते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

मनुष्य की एक बहुत ही बुरी आदत है कि उसमें बहुत जल्द गर्व आ जाता है। गर्व आ जाता है इस बात का कि आज उसके पास नेम है, फेम है, घर है, गाड़ी है। इस बात की जो एक ईगो है वो उसमें आ जाती है। अपनी शक्ति, अपनी संपत्ति को देखकर कभी घमंडी मत बनिए, क्योंकि जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो सबसे शक्तिशाली मनुष्य की जो देह है ना दोस्तों, वो भी धरती में डल जाती है और उसके ऊपर भी घास उगाती है। इसलिए किस बात का घमंड, ये जब शरीर ही आपका नहीं है तो धन संपत्ति वैभव पोजिशन ये कैसे आपकी होगी। आइए इसी एक बात के साथ बढ़ते हैं हमारे जीवन के सफर में आगे। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

जीवन को जानने की समझने की एक और कोशिश जीवन आधार रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ और इसी कोशिश के साथ एक और गीत के साथ आगे बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, मुझे सुनते रहिए और सुनते रहिए जीवन आधार।

धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी मन में धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला कभी भी आप ठीक से नहीं ले सकते। अब देखिए ना, अगर कोई माली किसी पेड़ को सौ घड़े पानी से भी सींचने लगे तो भी वो फल तो ऋतु आने पर ही देगा ना। ऐसा तो नहीं अगर आप उसमें बहुत सारा पानी डाल देंगे तो आपका पेड़ भी जल्दी बढ़ जाएगा और उसमें फल भी आ जाएंगे। सब कुछ वक्त के साथ ही होता है, इसीलिए हर चीज को समय दीजिए, वक्त दीजिए और वक्त पर छोड़ दीजिए। आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं हमारे जीवन आधार में आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी सताक्षी के साथ।

श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन के आधार से जुड़ा हमारा और आपका खास साथ जीवन आधार में। वक्त की अहमियत को ध्यान में रखते हुए और आपसे कल मिलने के वादे के साथ आज के सफर से अब लूंगी विदा, इजाजत और कल जरूर लौट कर आऊंगी। तो कल जब तक आपसे अगली मुलाकात होती है तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।

नमस्कार ब्रिस्बेन, कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, आपकी अपनी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन के साथ प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुकी हूँ जानने का सफर। आशा करती हूँ इस सफर आप सभी का बेहतरीन जाए। जी हाँ, आज है थर्सडे और इस थर्सडे की खूबसूरत सुबह और हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव पैकेज। जी हाँ, यानी कॉफी तो तैयार रखनी ही पड़ेगी, ट्रैफिक की तैयारी तो है ही, और हम तैयार हैं आपको देने के लिए कुछ लेटेस्ट खबरें, वेदर अपडेट्स, बॉलीवुड की बहुत सारी बातें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें जो आपका दिन बना दे। तो अपने दिन को बनाने के लिए आप सभी जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, बनाते हैं अपने प्यारी सी सुबह को और भी प्यारी। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, तो आइए फिर सबसे पहले नजर डालते हैं ब्रिस्बेन के मौसम पर। सुबह का मौसम जो है थोड़ा ठंडा और सुहाना बना हुआ है। जून के ये जो महीने हैं, इस महीने में क्वींसलैंड के एक इलाके में टेम्परेचर काफी नीचे गया है और लोगों ने विंटर जैकेट्स निकाल ली है। क्वींसलैंड ने इस सीजन के सबसे ठंडी सुबहों में से कुछ दिन देखे हैं। दोस्तों, अगर आप सभी ऑफिस या स्कूल रन के लिए निकल रहे हैं तो एक लाइट जैकेट जरूर साथ रखें। वहीं पर आइए सुनते हैं ये नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रसवानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने अपना 2026 और 27 बजट जो है वो अनाउंस किया है। काउंसिल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और पार्क पर बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। आपको बता दें कि कुछ सबहर्ब्स ऐसे हैं जिनमें रेट्स में हल्का इंक्रीज भी देखने को मिलेगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, इसी गीत के साथ एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। जो रोड यूजर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छी खबर है। जी हाँ, काउंसिल ने ऑपरेशन स्मूथ नाम से 110 मिलियन यानी कि 110 मिलियन डॉलर का रोड जो है वो रीसर्फेसिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे कि सिटी की कई बिजी रोड्स जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ब्रिस्बेन मेट्रो के लिए भी फंडिंग रखी गई है। जी है ना, गुड न्यूज। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हां जी, वहीं पर आइए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। ब्रिस्बेन की आइकॉनिक स्टोरी ब्रिज के रिस्टोरेशन पर भी काम जो है आगे बढ़ रहा है। अगले कई सालों में ब्रिज के प्रिजर्वेशन और रिन्यूअल पर बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रपोज किया गया है। जी हां, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और थोड़ी ही देर बाद करेंगे कुछ बॉलीवुड की बातें। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, वेलकम बैक है जी। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी। तो दोस्तों, चलिए फिर कुछ फिल्मी यादें याद करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड के उस दौर में चलते हैं जब एक डायलॉग पूरी फिल्म को अमर बना देता था। जी हाँ, हम बात शोले की ही कर रहे हैं। दोस्तों, बात मैंने शायद आप सभी से पहले भी डिस्कस की है शोले ही मूवी के डायलॉग की, लेकिन हम बात करते हैं आज इस मूवी की। आपको पता है, इस साल ये जो बॉलीवुड की मूवी है, यानी जो सबसे आइकॉनिक फिल्म है शोले, उसने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। जय, वीरू, बसंती और गब्बर के किरदार आज भी उतने ही मशहूर है जितने 1975 में थे। दोस्तों, फिल्म के जो डायलॉग्स है ना और गाने हैं, आज भी हर जनरेशन को याद है। फिल्म का रिस्टोर्ड वर्जन जो है और ओरिजिनल एंडिंग है, वो भी दुनिया भर के स्पेशल स्क्रीनिंग्स में जो है दिखाया गया है। और इसमें आपको पता है फनी फैक्ट क्या है, जो धर्मेंद्र है ना, धर्मेंद्र जी सेट पर हेमा मालिनी जी के साथ ज्यादा रीटेक्स लेने के लिए लाइटनिंग क्रू को भी मना लिया करते थे। ये बॉलीवुड के सबसे मशहूर लव स्टोरीज में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों, तभी तो उनका नाम जुड़ा है, धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी। हाँ, सुपरहिट लव स्टोरी है और लव बर्ड्स है। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत रेडियो ब्रसवानी में।

हाँ जी, तो आइए फिर फिल्मों की यादों में अगर हम आगे बढ़ ही रहे हैं तो यादों का सफर जारी ही रखते हैं। दोस्तों, आज से 50 साल पहले एक और फिल्म आई थी जिसने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बना दिया था, और वो फिल्म थी दीवार। जी हाँ, और फिर आई वो फिल्म जिसने रोमांस की डेफिनेशन ही बदल दी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सोचिए, 30 साल बाद भी लोग राज और सिमरन को नहीं भूले। जी हाँ, और ये फिल्म जो है मुंबई के सिनेमा हॉल्स में सालों तक चलती रही और आज भी बॉलीवुड रोमांस की बेंचमार्क मानी जाती है। जी हाँ, तो ये सुपरहिट फिल्म मानी गई है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और आपसे जाते जाते ये जरूर पूछना चाहूंगी दोस्तों, आपको क्या लगता है, गब्बर सिंह ज्यादा आइकॉनिक था या फिर मोगैम बोल? जी हाँ, राज सिमरन की जोड़ी अच्छी थी या फिर राहुल और अंजलि? जी हाँ, जल्दी जल्दी आप बताइए कि आपकी फेवरेट पुरानी फिल्म कौन सी थी और इनकी जोड़ी में से कौन सी फेवरेट जोड़ी थी। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, तो आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। तो कैसा लगा आज का कार्यक्रम यानी कि आज का प्रोग्राम जानने का सफर? दोस्तों, जाते जाते एक खूबसूरत बात आप सभी के लिए, हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है। कल की चिंता से ज्यादा आज के मौके पर ध्यान दीजिए। जी हाँ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं यानी आपकी दोस्त आरजे छानी जैन लेती हूँ आप सभी से इजाजत। रेडियो ब्रिसवानी सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जी हाँ, और हमेशा ऐसे ही हंसते खुश रहे। टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी।

नमस्कार, मैं सताक्षी। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। G7 समिट के मंच पर भी चला मेलोडी का जादू। पीएम मोदी से मेलोनी बोली, हम इंस्टाग्राम की सबसे मशहूर जोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी एक बार फिर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए फ्रांस में जुटे G7 देशों के नेताओं के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की एक छोटी सी मुलाकात सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुई। सोशल मीडिया यूजर्स का सबसे पसंदीदा ट्रेंड मेलोडी एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने लौट आया है और जी शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात ने सोशल मीडिया पर मेलोडी को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। नाविकों की सुरक्षा जरूरी, ट्रंप के बगल में बैठकर पीएम मोदी ने उठाया जहाजों पर हमले का मुद्दा। ओमान के पास समुद्र में एक कमर्शियल जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई नेताओं की मौजूदगी में कहा कि युद्धों का समाधान सिर्फ बातचीत, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही हो सकता है और सभी देशों को समुद्री रास्तों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। पीएम मोदी ने फ्रांस के एवियन रिसोर्ट में G7 समिट के एक सेशन को संबोधित करते हुए ये बातें कही। टेक्सास में हाईवे पर क्रैश हुआ छोटा प्लेन, लोगों ने कॉकपिट का शीशा तोड़कर बचाई यात्रियों की जान। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में एक बड़ा हादसा हुआ जहां एक छोटा विमान अनियंत्रित होकर सीधे हाईवे पर जा गिरा। क्रैश होते ही विमान में भीषण आग लग गई। इस हादसे के बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई और वहां से गुजर रहे लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर विमान में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। पुलिस के मुताबिक विमान में कुल 6 लोग सवार थे जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आइए जुड़ते हैं भारत के साथ और सुनते हैं भारतीय खबरें। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का टेरर नेटवर्क का भंडार फोड़, तहरीके तालिबान हिंदुस्तान के 5 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हैंडलर शहजाद भट्टी के नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 8 सदस्यीय इंटर स्टेट आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया है। इस कार्यवाही में 5 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 5 पिस्टल, 10 कारतूस शहजाद भट्टी नेटवर्क के सदस्य आबिद जट के पोस्टर और पुलिसकर्मियों का पीछा करने व धमकी देने वाले वीडियो बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार ये मॉड्यूल दिल्ली और आसपास के राज्यों में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने वाला था। इसके साथ ही आतंकी संगठन तहरीके तालिबान हिंदुस्तान का प्रचार प्रसार कर रहा था। फिरोजाबाद के डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर हादसा, चलती ट्रेन में लगी आग। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर दौड़ती ट्रेन मालगाड़ी में अचानक आग लग गई। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया। देखते ही देखते पूरी बोगी से आग की लपटें निकलने लगी। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। इतनी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: आप सभी का प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अमिता आपको भी नमस्ते।
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन।
1: और दोस्तों आप सब कैसे हैं आज सुबह? आई फेल वेरी गुड दिस मॉर्निंग, लाइक वोक अप वेरी अर्ली। आई वाज अप लाइक My watch tells me I slept 5 hours.
2: Okay.
1: Yeah, that's not too bad.
2: Not too bad.
1: Yeah. But I don't think the watch can tell if you are awake.
2: No, it can't. Yeah, that's the thing.
1: Lekin, I got up early in the morning. The whole world belonged to me at that time. And it was just beautiful morning. Isn't it a beautiful morning?
2: It is a beautiful
1: cold,
2: morning.
1: Crisp,
2: beautiful,
1: cold.
2: Overcast.
1: Yeah, it's a beautiful morning.
2: The way the clouds look. Have you looked at the clouds this
1: yeah,
2: morning?
1: Yeah, I saw that. Yeah, different kind
2: it's
1: of clouds.
2: It's like funny, like scattered funny, kind funny. Of clouds. Yeah, yeah. Like it's, I don't know how to describe it.
1: Bataiye dosto, aise cloud ko kya bolte hain? Scattered clouds.
2: I don't know. Yeah. I said scattered, but I don't know.
1: Oh, did you say scattered?
2: I said scattered clouds, but I don't know.
1: All right.
2: How to describe.
1: Okay. Dekhe dosto, aaj kya tarikh hai? आज 17-18 है ना?
2: 18
1: और आज चलो देखते हैं हमारा जो क्या कहते हैं हमारा वेदर कह रहा है
2: कि
1: 12 यानी हो चुका है कि भी होगा सुबह, आई डोंट नो, कल सुबह एनी वट एवर 13 है कल, 13 and 24 आज के लिए नो रेन, कल के लिए 1 millimeter कहा गया है, सरडे के लिए शावर और 2 कह रहे हैं, 15 and 25 and 7 millimeters ऑफ रेन, संडे को शावर्स 16 and 22 and 2 to 20 millimeters ऑफ रेन, वाओ, मंडे को शावर और 2, 15 and 23, 4 millimeters ऑफ रेन, ट्यूसडे को सनी रहेगा दोस्तों, 12 and 21, क्लाउडी नहीं सनी, नो रेन, और फिर वेंसडे को मोस्टली सनी, 12 and 21 रहेगा और बारिश होने की संभावना नहीं है दोस्तों, ठीक है। और रास्ते पर क्या हो रहा है, इप्सविच मोटरवे डेरा जो हैजर्ड इज बाउंड था ये क्लियर हो गया है दोस्तों, और पैसिफिक मोटरवे तेरंगिंडी स्टेशनरी व्हीकल नो ब्लॉकेज नॉर्थ बाउंड टूवर्ड्स ग्रीन स्लोप, ठीक है। ओके, आई कीप फॉरगेटिंग बट चलो हफ्ता फिजी न्यूज देख लेते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से फिजी को बड़ा सपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया ने फिजी के नया नेशनल रिफेरल हॉस्पिटल के लिए ऑस्ट्रेलियन 15 million यानी फिजी 23.6 million दिए हैं। ओके, और सहायता देने के ऐलान किया है, अभी दिए नहीं लेकिन ऐलान किया है, इसे फिजी के हेल्थ सेक्टर को मजबूती से मिलेगी और बेहतर मेडिकल सर्विसेज का विकास होगा। हाउ मच कैन दैट मच मनी बाय? डिजिटल फिजी की तरफ एक और कदम, सरकार टेलीकॉम और इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना या बनाने पर जोर दे रही है, फाइबर नेटवर्क एक्सपेंशन, स्कूल्स और रिमोट कम्युनिटीज तक इंटरनेट पहुंचाने और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम तेजी से चल रहा है। आई वाज जस्ट थिंकिंग देयर वाज केबल एंड वायरलेस इन फिजी, राइट, दे यूज्ड टू ले ऑल द वायर्स अलोंग द सी फॉर कम्युनिकेशन, राइट,
2: या या या,
1: आई वंडर इफ दे स्टिल डू दैट, दे माइट बी जस्ट बैकअप बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज सैटेलाइट, राइट,
2: Yeah, mostly satellite.
1: Yeah. No? अच्छा, बर्ड फ्लू के लिए, बर्ड फ्लू
2: फ्लूट
1: जी जैसे
2: के
1: लिए तैयारी, फिजी संभावित एवियन इन्फ्लुएंजा इट्स कॉल्ड, यानी बर्ड फ्लू, यू नो द बर्ड फ्लू इज कॉल्ड एवियन इन्फ्लुएंजा, आई डिडंट नो दैट, आउटब्रेक से निपटने के लिए प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज चला रहा है ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो तुरंत रिस्पांस दिया जा सके। और टूरिज्म फिजी की एक नई स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, टूरिज्म फिजी अब सिर्फ टूरिस्ट नंबर्स पर नहीं बल्कि हाई वैल्यू विजिटर्स पर फोकस कर रहा है. हाई वैल्यू यानी ऐसे टूरिस्ट जो फिजी में ज्यादा खर्च करे और इकोनॉमी को ज्यादा फायदा पहुंचाए. ऐसा टूरिस्ट नहीं जो फिजी जाए तो फिर जहां पर जाए उनके ऊपर निर्भर रहे कि वे सब कुछ ला कर खिलाए पिलाए. ऐसे मत करे, वहां पे भी पीपल आर स्ट्रगलिंग. अगर आप फिजी घूमने जा रहे हैं तो मेक श्योर यू लुक आफ्टर द फैमिली देयर व्हाइल यू आर देयर, नॉट द अदर वे अराउंड.
2: नॉट द अदर वे अराउंड.
1: स्कूल फिर से खुलेगा या खुलेंगे. मौसम में सुधार के बाद फिजी के सभी स्कूल्स कल से नॉर्मल ऑपरेशंस के साथ दोबारा खुल जाएंगे. और मुझे तो पता चला कि अभी भी बहुत बारिश है, कोई बता रहा था. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग.
2: सो लाइक कैन आई डिस्टर्ब
1: यू? या
2: डू यू थिंक देयर इज एनीवन लाइक कलेक्टिंग क्लोथ्स और एनीथिंग टू?
1: आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एनीमोर. नोबडी सीम्स टू बी डूइंग इट एनीमोर.
2: ओके.
1: 30 सितंबर से प्रोविजनल ड्राइवर्स के लिए नया टू स्टेज लाइसेंसिंग सिस्टम लागू होगा जिसका उद्देश्य रोड सेफ्टी बढ़ाना और एक्सीडेंट्स कम करना है. ठीक है, सो दे कैन गेट अ बेटर ट्रेनिंग. आई मीन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की जगह ट्रेनिंग बोल रहा हूँ मैं. क्या बात है आज.
2: I don't know what's going on with you.
1: सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों को देखकर रास्ता बदलने के बजाय हौसला बढ़ा देते हैं. ठीक है, डोंट गिव इन. या कीप ट्राइंग. ठीक है, तो चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं. दोस्तों एक गीत मैं सुनना चाहता हूं, यानी यू गाइस विल बी शॉक्ड कि आज कैसे मैं एक सुनना चाहता हूं.
2: ओके.
1: लेकिन इसे दिल में आया कि मैं आज ये सुनूंगा. ठीक है, शायद आपको भी अच्छा लग जाए दोस्तों.

इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़ लिए कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं और न भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: तो बड़ा प्यारा सा गीत भजन था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कभी कभी मारते गाते दोस्तों, इसमें एक शब्द यूज किया गया, मैं मूर्ख, यानी मैं अनजानी। आई डोंट नो इफ आई शुड से मूर्ख,
1: मूर्ख
0: मूर्ख गाना में है ना वो, और फिर है जिसमें कि तुम स्वामी मैं कुछ है खलका भी, ये सब बात यूज कर रहे हैं। तो आदमी का लिखा हुआ है ये, कोई भगवान ने नहीं लिखा था इसको, मुझे भी याद नहीं किसने लिखा था, बहुत पहले इस भजन को लिखा था उन्होंने आरती को। लेकिन मैं मूर्ख नहीं बोलता हूँ, आई डोंट थिंक मूर्ख इज द राइट वर्ड।
1: Maybe you're just saying you.
0: Or ek jagah par kalkami, which is like, not a very nice word. I don't like it.
1: Maybe it's saying you ignorant or unknowing, or you know what I mean.
0: Maybe agyani or something would have been better, but not ki mai murak. I just don't like it. That's simple.
1: That word.
0: Yeah. Mm. Or jo kalkami word is not a very nice word either. So I'm not any of that.
1: I don't know that word. I don't know that meaning.
0: I don't want to say any more
1: okay.
0: on that one. But,
1: okay.
0: But I'm not that, you know. Yes, the Lord knows everything. I don't. But I'm not a murak. If I'm a murak, I can't understand anything, isn't it? आपका क्या विचार है इसमें दोस्तों? राव जी आप भी सुन रहे होंगे, क्या अपने आप को मूर्ख बोलना अच्छा बात है? कुछ इसमें परिवर्तन लाना चाहिए मेरे ख्याल में। एक कोई जैसे मैंने कहा, ये आदमी का लिखा हुआ है, राइट right? उस समय में शायद लोग आपको मूर्ख बोलते होंगे, आई डोंट नो। अभी आपको मैं मूर्ख बोलूं अच्छा लगेगा?
1: देयर यू गो।
0: एनीवे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर है 04300031701। इस नंबर पर हमें आप कॉल कर सकते हैं। बस कभी कभी सोचता हूँ तोता की तरह हम रटते नहीं रहे, कुछ
1: तोता
0: मैना की कहानी। तोता एंड मैना, दे गेट अलोंग, डू दे? समटाइम्स दे गेट अलोंग, समटाइम्स दे फाइट। ओके,
1: वेल दैट्स जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, ए?
0: इसीलिए मैंने कहा था। ओके चलो जो कुछ सुना दो। मैं तो अपना सुनाया, मेरा दिल ठंडा हो गया थोड़ा।
1: ओके वेल
0: चलो।

0: You don't need this today.
1: और देखिए, जो हमें बात कर रहा था हम दोनों जो आरती के बारे में, वो है ओम जय जगदीश हरे। और इसको लिखा था पंडित श्रद्धा राम फिलोरी, ठीक है। और ये पोएट था, स्कॉलर था और एक सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम पंजाब थे। ही कंपोज्ड इट अराउंड 1870 में, ये गाना इन्होंने लिखा था। और एंड इट लेटर बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली संग हिंदू आरतीज। इंटरेस्टिंगली मेनी पीपल थिंक इट इज एन एंशियंट ट्रेडिशनल आरती, बट इट्स ऑथर इज एक्चुअली नोन, राइट? सो इट वॉज रिटन बाय समबडी नोन, राइट? ओके, इट्स नॉट लाइक वन ऑफ दोज व्हाट यू कॉल वेदर्स और एनीथिंग लाइक, यू नो। It was written by a human being, but its author is actually known. The Aarti became especially popular across India after it was featured in the movie. What movie? Tell me.
0: Abdullah.
1: No.
0: Purabar Pachim first. Yes.
1: So, देखिए दोस्तों, और समय समय के साथ परिवर्तन है जरूरी, और इसमें भी हमको changes करना जरूरी है. But I won't sing Aarti where I'll call myself a murak. ओके, ऑलराइट। तो हैविंग सेड दैट, आगे बढ़ते हैं। और लोग डरते हैं सब चीज चेंज करने के लिए कि कुछ हो ना जाए गड़बड़, बट अच्छा से बैठ के सोचे आप।
0: इफ इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड, व्हाई मेस विद
1: इट? या दैट्स व्हाट दे, वेल हाउ डू यू नो इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड, बट यू नो दे डोंट वांट रॉक द बोट, सिंपली पुट। ओके, तो चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और what is he saying? The line you mentioned, मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी। मैं सेवक तुम स्वामी is okay. That's fine.
0: Yes, yes.
1: But मैं मूरख खल खामी, okay? I don't like that. I know there's better words to you know. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं।
0: Okay, so it's 7:30.
1: Yep.
0: So let's say happy birthday if it's your birthday today. Today is the 18th of June, and a happy anniversary if you're celebrating your anniversary today. So, hope you enjoy your day. And we have a song.

0: देखिए दोस्तों, किसी ने मुझसे पूछा, कौन राजन ना,
1: हाँ,
0: कि नीतीश भाई हम तो गाते आए हैं अभी तक, यार क्या चेंज कर दिया? आपने कहा था कि जो कलकामी पर आपने नहीं कुछ कहा, आपने इग्नोर कर दिया। नहीं, इससे बात नहीं है दोस्तों। मैं ये कैसे जानता हूं, क्योंकि मेरे स्वामी जी ने मुझसे कहा था, मेरे गुरु जी। देखिये, खलकामी दो है, एक वर्ड होते ना खलकामी। खल का मतलब है विकेड, इल नेचर्ड, समवन विद फॉल्ट्स और बैड टेंडेंसी। वो मैं नहीं हूं, आप हो।
1: I'm sure of that.
0: और कामी मीन्स अ पर्सन ड्रिवन बाय डिजायर्स, क्रेविंग्स एंड वर्ल्डली पैशंस। तो ये तो मैं नहीं हूं, सो व्हाई शुड आई से कि मैं खलकामी? जो हमारे वहां पंडित लोग सब सुन रहे हैं, दोस्तों आप इसके बारे में आकर बताएं मुझे, क्या आप अपने आप को विकेट इल नेचर, सम ऑफ द फॉल्ट्स ऑफ बैड टेंडेंसी और साथ साथ में ड्रिवन बाय डिजायर, क्रेविंग एंड वर्ल्डली पैशंस? अगर आप है तो ठीक है, आप कह सकते हो, बट उन दिनों में शायद कोई क्वेश्चन नहीं करता था ना। जबकि मैं मानता हूं उन दिनों में शायद लोग और अच्छे होते थे, आई डोंट नो। सो दैट्स व्हाई जब ये पाठ आता है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि अपने आप को यह बोलना। खैर चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आई मीन वी अपने आप को इतना नहीं गिरा सकते हैं दोस्तों। अगर आप है तो फिर चलो कोई बात नहीं, लेकिन मोस्ट पीपल आर क्वाइट यू नो अच्छे लोग हैं दुनिया में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आज पुराने गीत आप सुनेंगे। कहां से ऐसे शुरू हो गया आज, अनुप जलोटा को हम दोष देंगे? नहीं जी, वंडरफुल पर्सन, नो नेवर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और व्हाट यू गोना प्ले नाउ?
1: लेट मी प्ले समथिंग फ्रॉम 1957।
0: ओके।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
4: और देखिए दोस्तों, हमारे लोकल्स भी कुछ नाम कमा रहे हैं आजकल। जैसे कि अभी मेरे पास एक आया है माइलो का, नेसल्स माइलो, बड़ा सा केन है और इसमें एक तस्वीर है जो कोई और नहीं लेकिन ईशानी सिंह, माइलो लेजेंड,
5: इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर।
4: जी, अगर आपने लिया है केन, अगर आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे एक फोटो है, छोटी सी लड़की ने अपना क्रिकेट बैट स्विंग कर रही है, वो कोई और नहीं है लेकिन हमारे भाई परमा, परमा की नातिन है ना? आपकी नातिन और वेरी प्राउड, मेरी भी नातिन है तब, और बहुत बहुत अच्छा लगा और इट्स ब्यूटीफुल। तो अगर आपने तस्वीर देखे हैं उसमें माइलो में, तो एक्चुअली वाज थिंकिंग अबाउट गेटिंग सम माइलो, यू नो,
5: देयर यू गो,
4: या वी कैन शेयर इट एंड नो, बट इट्स परमा, आई नो यू मस्ट बी वेरी, परमा भाई नमस्कार।
6: नमस्कार जितेश भाई, अमिता जी नमस्कार।
4: यू मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड दैट शी हैज मेड इट टू दैट। आपका नाती भी है ना?
6: नाती है, वो भी क्रिकेट खेलता है, दोनों खेलते हैं।
4: हाँ हाँ, तो ये इनका तो काफी इंडोर्स हुआ है ना हमारे क्रिकेट वर्ल्ड में?
6: जी हाँ, अभी वो फिजी गई थी और फिजी में फिजी देश को उन्होंने रिप्रेजेंट किया।
4: अच्छा,
6: क्रिकेट में।
4: अच्छा,
6: और फिजी में कुछ खेल खेलने के बाद वो पापुआ न्यू गिनी ले गए।
4: अच्छा,
6: ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पूरा खर्चा भरा था।
4: अच्छा,
6: VIP सर्विस होटल में, तो फिजी में जाकर उन्होंने प्रेसिडेंट के साथ उनका मुलाकात हुआ।
4: ओके,
6: एक पार्टी दिए उन्होंने, मिनिस्टर्स भी वहां थे।
4: अच्छा,
6: पापुआ न्यू गिनी जब गए तो फिजी का हाई कमिश्नर इनके साथ बैठा था।
4: अकेला है आज कितना, अभी उम्र कितना है?
6: अभी जतीश भाई बस 16 साल, 16 ईयर्स
4: की, देखो। और लेकिन बड़ी बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि नेसल्स माइलो केन जो 50 सेव्स है इसमें, 1 kg में इनका फोटो है।
6: जी हाँ जतीश भाई, और इसको फिल्माने के लिए उन्होंने ब्रिटिश फोटोग्राफर्स को भेजा था।
4: अच्छा,
6: ऑल केम फ्रॉम लंदन।
4: अच्छा,
6: और इनको सिडनी में जाकर 5 दिनों तक ये सब करने के बाद तो इनको चुने उन्होंने, देयर वर 3 पीपल।
4: ओके,
6: तो ईशानी को चूज किए।
4: अच्छा,
6: और बोल दे तुम्हें हम रख रहे हैं फोटो में।
4: वाह,
6: तो मैंने बोला चलो, और जो उपहार वगैरह दिए ना, लॉट ऑफ गिफ्ट्स वे गिवन।
4: ओके, मिस पॉलिन हैंसन, आई एम सॉरी टू से दिस, आपका स्पीच मैंने कल सुना, आई वॉज सॉरी टू ब्रिंग यू इन टू दिस, बट हमारे जो फॉरेनर्स है, हमारे जो इंडियंस है, चाहे आप फिजी का इंडियन हो चाहे इंडिया का इंडियन हो, वी आर अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। ओके, सो डोंट थिंक दैट यू नो, आपने कहा कि प्रोडक्शन यानी बर्थ रेट हमारे में कम होने लगा है, बाहर लोग जो है उनका ज्यादा होने लगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। या वी आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, वी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट स्पोर्ट्स वाइज, वी कॉन्ट्रीब्यूट मनी वाइज, we pay our taxes, so be careful next time. ये मेरा यही आपसे कहना, I would like to interview है। और तो परमा भाई सॉरी आई हैड टू इंजेक्ट दैट इन बट आई एम वेरी प्राउड
6: जी और लोगों
4: से वेरी प्राउड ऑफ आवर पीपल व्हेन दे डू समथिंग गुड
6: आपकी तो बेटी की तरह
4: मेरी तो
6: है ना?
4: बेटी है मेरी तो वो नातिन
6: और ये बात कभी मत भूलना वो हमेशा प्रोग्राम सुनते हैं जोक भी करते हैं जो आप बोलते हो
4: अच्छा
6: उनके okay, हिंदी अच्छी है
4: जी हाँ
6: लोकली बोन है
4: जी हाँ
6: यहीं की पैदाइश है जो नाती और नातनी और खुश होते हैं हमेशा मुझे बोलते हैं नाना कुछ गाना आप चुन रहे हो प्रोग्राम के लिए तो बोलते ये नहीं ये लगा दीजिए अमिता जी दे वांट सम न्यू सॉन्ग्स टू बी प्लेड और लता जी का किशोर कुमार जी का पुराना गाना उनको पसंद
4: है
6: तो जो अभी आप सेगमेंट कर रहे हो
4: दे
6: नॉर्मली लिसन और थैंक्स फॉर गिविंग दी अपॉर्चुनिटी
4: नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है
6: सभी दुकानों में आ गया है तो मैंने सोचा चलो ब्रिजवानी के लिए उनके तरफ से कुछ आपको मिल जाए ताकि आप यूज करें और बस लोगों से यही कि जिनके भी घर में बच्चे हैं और जो भी आप कर रहे हैं उनको भाई प्रोत्साहित करें
4: बिल्कुल
6: उनको मान सम्मान बढ़ाएं उनके लिए जैसे आप दोनों बोलते रहते हो कि आवर किड्स आर आवर एसेट्स
4: यस
6: उनको हमें कुछ बनाकर एक नमूना कायम करना है दुनिया के लिए
4: जी, जी।
6: ताकि पढ़ लिख कर बड़े हों और अपने काम में आगे बढ़ें पांव पर खड़े हों
4: जी हाँ
6: लेकिन रेस्पेक्ट चाहिए बहुत मान सम्मान माता पिता का सेवा ये सब बहुत आवश्यक है तो ये बच्चों में मैं खुशी से बोल सकता हूँ कि दे आर ग्राउंडेड पीपल शाह हैं इसीलिए अमिता जी और जतीश भाई और दोनों अच्छे हैं वी आर वेरी प्राउड टू हैव देम
4: जी हाँ ये देखो ये हमारे फिर वहां पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ जो कल्चर एसिमिलेशन के बारे में बात कर रही है कभी कभी वो कौन सा कल्चर हमारे में कल्चर है हमारे में कल्चर के नीचे आता है कि वी शुड प्रोवाइड अ रूफ वी शुड प्रोवाइड लव वी शुड प्रोवाइड सॉलिड ग्राउंड फॉर आवर चिल्ड्रन ठीक है दैट्स आवर कल्चर हमारे कल्चर में नहीं चलते फिरते लड़का पैदा कर दो फिर उसको आप भूल जाओ व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई गो एंड स्टे विद द होमलेस पीपल आई डू वर्क विद देम सम ऑफ देम आर वेरी हर्ट अगर इफ यू टॉक टू देम अबाउट देयर पेरेंट्स दे डोंट वांट टू टॉक टू यू दे डोंट वांट टू हियर देयर पेरेंट्स नेम्स इसलिए कुछ लोग इतना ज्यादा चले गए हैं बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिटर्न उनका दिमाग पक गया है ड्रग लेते लेते ये सब होते होते और फिर यहां पे कह रहे हैं कि हमारे वी गॉट सो मेनी पीपल होमलेस क्यों होमलेस होते हैं इफ यू डोंट गिव देम अ प्रॉपर होम प्रॉपर एजुकेशन प्रॉपर बैकग्राउंड प्रॉपर फाउंडेशन ऑफकोर्स दे विल बिकम होमलेस एंड दिस इज वॉट एंड आई हैव नॉट सीन वन इंडियन चाइनीज इन दिस होमलेस ग्रुप Pauline Anson, I have not seen. Wherever I go, I haven't seen. So what does that tell you? I think that enough says a lot. So ये जो चीज है और फिर कहते हैं कि foreigners आते हैं हमारा घर नहीं मिलता है सब expense हो गया अरे भाई foreigners नहीं होंगे तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा जो मिल रहा है social security अभी क्या बोलते हैं जो कुछ
6: Centrelink
4: से मिल रहा है okay somebody has to fund it.
6: Mm-hmm.
4: And it's the hard-working people that come to this country, they wash toilets, they do everything. And then you question them, they are taking my job.
6: So
4: this is a classic example when ghar mein jab pyar hota hai, jab ghar ka foundation majboot hota hai, tab bachche bhi aise hote hain.
6: Sahi Jatish bhai.
4: Thank you, Parma bhai, aap lekar aaye hain. This is a lesson. Aur this is our culture. And this, I want to bring it out to these people. We have to speak up, okay? So, anyway, thank you. And please, Ishani ko congratulate kar dena.
6: Ji, main zarur kahunga.
4: Yeah.
6: Jatish bhai, subah hogi, sham hogi, hum tumhare pyar mein bas jeete marte jayenge. Kya baat hai? Na, lovely program. Main sunkar aa raha tha gaadi mein.
4: Acha,
6: Amita ji, thanks for your time. Aapka mic maine le liya, aapka kursi maine le liya. और धन्यवाद यू अकोमोडेटेड मी थैंक यू एवरीवन गॉड ब्लेस ईच वन
4: थैंक यू वेरी मच एक्चुअली कल रात ही मैं सोच रहा था कि मुझे दूध के साथ थोड़ा सा माइलो पीना चाहिए रिमाइंडेड मी माय ओल्ड डेज व्हेन माय मम यूज्ड टू डू दैट यस यस यस यस अच्छा परमा भाई बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू
5: नो वरीज थैंक यू
4: अमिता
5: यस सर
4: कल सुबह कॉफी नहीं
5: Girl, we're not here.
4: Oh, okay.
5: I'm not when coming. Back, okay. I'm not coming to your house to make your stuff.
4: Acha, chale dosto, gis sunte hai mera man tera pyaasa.
5: Okay.
4: Puri kab hogi aasha, theek hai? Chalo, sunte hai is geet ko.

0: जी हाँ दोस्तों, प्यार तो एक दिन होना था और
1: हो गया
0: और हो गया। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगला जो गीत है एक ये भी प्यारा गीत है, आशा भोसले और इस रफी साहब।

0: प्यार है,
1: अरे बाबा है,
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है?
2: No, no, no, no, no, no, no, no. Okay.
3: See what can happen when you just repeat.
2: They don't. Repeating, yeah, repeating. That's right. Yeah, yeah, yeah. True.
4: Hmm. और देखिए दोस्तों एक okay, that's finished. Crash हुआ था. Old Cleveland Road Cooper Room में multi vehicle crash, lane on lane reduced. But नहीं ये clear हो गया. अभी भी फिर से आया है कि जो Kingsford Smith Drive Hamilton. Oh, this is different one, right?
3: Kingsford Drive is not in Moulton.
4: No, Kingsford Drive, Kingsford Smith Drive.
3: Yeah.
4: Hamilton. Right, crash जो वहाँ हुआ था ये clear हो गया ठीक है. But जो ये Cooper Road में जो हुआ है that's different, right?
3: Yep.
4: That one is no further multi vehicle crash हुआ था. लेकिन nothing about being cleared at the moment. Okay. और चलिए कुछ 15 मिनट रह गया इस प्रोग्राम में दोस्तों और सुनते हैं अगला गीत. इस गीत को गाया है मना डे और लता जी ने.

0: जी हाँ दोस्तों, प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार से क्यों डरता है दिल। ओह माय गॉड, आगे नहीं बोलूंगा कुछ। ओके तो चलो।
1: ऑलराइटी, वी गॉट मेबी टू सॉन्ग्स
0: या
1: ओके, सो लेट्स ट्राई एंड राउंड इट अप फॉर द

0: बहुत ही प्यारा गीत अभी आपने सुना दोस्तों। अब हमें यहाँ से जाने का समय हो चुका है। आप सभी ने साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। और बस आपसे यही कहना है कि हैव अ लवली वीकेंड। कल आप हो जाएंगे नीलम के साथ, तो कार्यक्रम जरूर सुनिएगा। और शनिवार को आप हो जाएंगे परमा भाई के साथ, ठीक है।
1: नमस्ते एवरीवन, हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड। सी यू मंडे।

0: गुड मॉर्निंग अजी, कैसे हैं?
1: बढ़िया, जबरदस्त।
0: देखिए, हमारी दुआ हमेशा यही होती है कि हर वो सुबह जो हमें आपसे मिलवाती है वो आपकी ज़िंदगी की बेस्ट सुबह हो। हर आने वाला दिन आपकी ज़िंदगी का बेस्ट दिन हो और आपकी ज़िंदगी पूरे दिन खुशियों से महकती रहे। और ये दुआ अगर कबूल होती है तो यकीन मानिए, धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी ही खुशियों से भर जाएगी। और इसी ज़िंदगी के सफ़र पर एक बार फिर से अपना साथ लिए मैं सताक्षी आ गई हूँ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। जी हाँ दोस्तों, ये है साथ मेरा आपके साथ इट हैपन्स में। और इस साथ के साथ आज हम फिर से अपने दिन की, अपनी जर्नी की आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। एंड आई रियली विश कि आप भी इस सफ़र पर मेरे साथ चलने के लिए बिल्कुल ताज़ा तरीन तरीके से तैयार होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी के, हमारी जर्नी के एक और सफ़र पर। मैं हूँ सताक्षी आपके साथ और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपन्स। और ये अगला ट्रैक आपके लिए, इसके उस पार होंगी आपके साथ और भी बेहतरीन बातें।

happens, enjoy कर रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM पर सताक्षी के साथ। It happens में आज हम फिर से कर रहे हैं आपके साथ जिंदगी की कुछ खूबसूरत बातें, लेकिन इन बातों की सही शुरुआत के पहले हम विश करेंगे उन्हें जिनके लिए आज का दिन है स्पेशल और खास। सो जिनका भी आज है हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हम विश करते हैं कि आपको जिंदगी की हर चाय ख्वाहिश मिले और आप जिंदगी का जो भी कदम उठाएं आपको सक्सेस दे, प्रॉस्पेरिटी दे और ढेर सारी लोगों की नज़र में इज्जत दे। जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, शादी के सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। जिंदगी के सफर पे एक दूसरे का हाथ थामे हुए यूं ही चलते रहें और यूं ही आप आगे बढ़ते रहें बगैर इस बात की परवाह किए कि लोग कैसे हैं, क्या हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, बस आप एक दूसरे का साथ निभा पाएं। जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको डेडिकेट करती हूँ ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्बेन, सुनते रहिए सताक्षी के साथ। इट हैपेंस।

वेलकम बैक, इट हैपेंस। सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रिचु प्रस्वानी 1701 एम पर, और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। तो चलिए आज इट हैपेंस में हम बात करते हैं आपके आसपास रहने वाले कुछ ऐसे लोगों की जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। जी हाँ, कुछ लोग हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में ऐसे जरूर होते हैं जो अपने आप को समझते हैं सुपीरियर, और इनको लगता है कि ये जब चाहें हमें नीचे दिखा सकते हैं, ये जब चाहें हमारे इमोशंस को यूज कर सकते हैं, और हम इनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं पर्सनली इमोशनली। हम समझ नहीं पाते कि हम इनको कैसे हैंडल करें। तो ये याद रखिए कि इनसे इफेक्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ को सुपीरियर समझते हैं। ये अपने आसपास जो इनका माहौल है ना, या इनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, ये उससे ना तो सेटिस्फाई होते हैं और ना ही खुश होते हैं। इन्होंने अपने ईगो को ही सबसे ऊपर रखा है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो। ये हमेशा अपनी कमियों को दूसरों पर थोपते हैं, और इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है ये बहुत पावरफुल है, या ये बंदा जो है ये बहुत कुछ जानता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसा शो करते हैं, बल्कि ये खुद अंदर से बहुत ही खोखले हैं। इसलिए इनको जो आप भाव देते हैं ना बिना मतलब का, सबसे पहले वो भाव देना बंद कर दीजिए, वो इम्पोर्टेंस देना बंद कर दीजिए। आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। इट हैपेंस में स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ आपका अपना ये ब्रेकफास्ट शो।

रेडियो पिस्तानी 1701 AM पर दोस्तों आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस, जिसमें हमेशा की तरह आज भी हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें आपसे कर रहे हैं। आपके इस सफर में, इस खूबसूरत मॉर्निंग सफर में हम आपके साथ साथ चल रहे हैं। आपको पता है आपको कैसा इंसान डिजर्व करता है? जी हाँ, खुद को कम मत समझिए, हमेशा ये मत सोचिए कि हम किसे डिजर्व करते हैं। भाई आपको भी तो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि एक जो बंदा जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी ही बिताना चाह रहे हैं या जो आपकी दोस्ती के लायक है वो बंदा होना चाहिए ना, आपकी अपनी इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए। तो आपको एक ऐसा इंसान डिजर्व करता है जिसके पास अगर आप हैं तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसके पास क्या है, यानी कि वो हर बात में आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे। उसे ये एहसास हो कि अगर आप उसके पास हैं तो शायद वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। उसको मोटिवेशन जो है वो आपसे मिलेगा, वो जो एक हर जगह उसके लिए स्टैंड लेने वाला इंसान होता है वो उसके पास है, इमोशनली उसे सपोर्ट करने वाला इंसान उसके पास है, तो उसके पास लाइफ में बहुत कुछ है। तो जनाब अगर कोई आपको छोड़ कर गया है तो आपको उस बंदे को बस ये कह के याद करना है कि इस बंदे को मेरी वैल्यू थी ही नहीं, और जिसे आपकी वैल्यू नहीं थी उसके साथ रहना ये तो खुद के साथ ही अन्याय हुआ ना। तो चलिए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो पिस्तानी पर सताक्षी के साथ। जी हाँ, इट हैपेंस।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
3: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
4: पाकिस्तानी 1701 AM पर दोस्तों आपके साथ इट हैपेंस के सफर में सताक्षी है, और अभी वो वक्त है जहां तीन बैक टू बैक ट्रैक्स निभाते हैं हमारा साथ. आज भी तीन बैक टू बैक गानों के साथ सताक्षी आपके साथ है. तो चलिए आज देखते हैं गानों की हैट्रिक में. जी हां, गानों की हैट्रिक में आज का पहला ट्रैक कौन सा है?

गानों की हैट्रिक एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। इसके पहले कि हम अपने इटहैपेंस के सफर में आगे जाकर कुछ और बातें आपके साथ करें, गानों की हैट्रिक के इस दूसरे ट्रैक को आइए एंजॉय करते हैं।

वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी को सुन रहे हैं आप और सुन रहे हैं गानों की हैट्रिक मेरे साथ। गानों की हैट्रिक का ही लास्ट ट्रैक स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए मेरे साथ। इट हैपेंस।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

वेलकम बैक इट हैपेंस के इस बेहतरीन और खास सफर में एक बार फिर से दोस्तों आप हैं सताक्षी के साथ और मेरे साथ आप सुन रहे हैं ये जो बेहतरीन सफर है हमारा और आपका। और इस बेहतरीन सफर पर आज एक बार फिर से कुछ खास और खूबसूरत बातें। देखिए, बातें तो आपसे वैसे सब करते हैं, मतलब आप जिस भी चैनल को ट्यून इन कर लें या अगर आप कुछ लोगों के साथ भी बैठ जाएं तो वो भी आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन बात ये भी है ना कि हमें किसकी बातें अच्छी लगती हैं, हम किसकी बातों से इंस्पायर होते हैं, हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा कौन है जिसके साथ बैठकर हमें ये लगता है कि यार ये बंदा जो है ये हमें समझता है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में जानना और समझना कि कौन सा ऐसा बंदा है जो हमें समझता है और कौन सा ऐसा बंदा है जिसके साथ अगर हम बात करें तो हमें अच्छा लगेगा। और क्या जो लाइफ लेसन है ये जो हमें बता रहा है, ये समझा रहा है, ये वाकई हमारे बेनिफिट के लिए है या नहीं, है ना। तो जिंदगी में जब भी किसी के साथ बात करें या किसी की बातें सुनें तो ये सबसे पहले ज़रूर देखें कि वो आपसे दूसरों को लेकर गॉसिप कर रहा है या फिर कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर कर रहा है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ आगे बढ़े। हाँ, सुनते रहिए हमारे साथ इट हैपेंस और बने रहिए रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।

नेचर मिसानी पर दोस्तों आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। और इस इट हैपेंस के खूबसूरत सफर में हमारी और आपकी जो जर्नी है प्यार भरी खूबसूरत सी जर्नी, इस पर ढेर सारी बातें हमारी हर रोज होती रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन जो मील है सुबह का उसके बिना कोई भी बात इट हैपेंस की खासकर अधूरी है। बिकॉज इट हैपेंस जब हमने शुरू किया था, इनफैक्ट टीम ने मुझे ये कहा था कि आप जैसा शो लेकर जाना चाहें आप ऑन एयर जा सकती हैं। तो जब मैंने इट हैपेंस चूज किया था आपके लिए तो मुझे ये लगा था कि यार मॉर्निंग शो है तो मॉर्निंग शो में कुछ ऐसा बेहतरीन होना चाहिए जो ऑडियंस को खुद से जोड़े, है ना। हम ऑडियंस से किसी भी प्रोग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब ऑडियंस खुद के साथ कनेक्ट करती है, लिसनर्स खुद के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी इम्पोर्टेंस बताना इस शो का मकसद है और यही हम हर रोज कोशिश करते हैं। आज भी इस शो का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम आपको आपकी इम्पोर्टेंस बता सकें। और आपकी इम्पोर्टेंस आपकी ज़िंदगी के हर एरिया में है, मतलब चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका ऑफिस हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं होंगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया जो है वो किसी की वजह से भी रुकती नहीं है, कोई भी काम किसी की वजह से नहीं रुकता, लेकिन आप उस काम को बहुत बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बेहतर निभा सकते हैं, आप अपने ऑफिस के हर काम को, अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, डील करते हैं उसके साथ में, राइट। तो बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप अच्छे से निभा रहे हैं, आप बहुत प्यारे हैं और इस दुनिया में रहना, हेल्दी और स्ट्रांग रहना आप डिजर्व करते हैं। इसलिए जनाब ये सारा लेक्चर इसीलिए था कि ब्रेकफास्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट जरूर करें। और आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे कि लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्टानी 1701 AM आपके साथ इस सफर में सताक्षी है।